नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे हैं। और अगर नहीं अच्छे, अगर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एनर्जी से भरा हुआ, गाता गुनगुनाता हुआ इट हैपेंस लेकर सताक्षी आपके लिए हाजिर हो गई है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी और बहुत सारे मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जो आपको सुनवाऊंगी। लेकिन लेकिन ये सब सुनने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ, तो भाई जिन्होंने अभी तक रेडियो सेट्स नहीं खोले और वो दूसरों के घरों से मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने रेडियो सेट्स भी ऑन कर लीजिए। अपने मोबाइल फोन्स, अपने कंप्यूटर्स, जहां पर भी आप मुझे सुनते हैं, प्लीज ऑन कर लीजिए, ताकि आप इट हैपेंस को अपने अपने घरों में अपने साथ एंजॉय कर पाए, है ना। और बहुत खूबसूरत गाने जो है वो आप यहाँ पर सुनने वाले हैं, लेकिन अगर वो दूसरों की विंडोज से आएंगे, आपके कानों में दूर से पड़ेंगे, तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए जल्दी से खुद के घर में भी शुरू कीजिए इट हैपेंस, और आज के गानों को गुनगुनाना भी तो है, तो जल्दी आप अपने कामों को फिनिश करते चलिए, ताकि दिन जो है वो अच्छा बीते, खूबसूरत बीते, मिसमैनेजमेंट ना फैलने पाए, है ना। क्योंकि एक बार रूटीन अगर बिगड़ा तो फिर पूरे दिन का रूटीन चेंज हो जाता है। तो ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखिए, आप काम करते रहिए, मैं आपको इंगेज रखूंगी अच्छे अच्छे गानों के साथ भी, आपको एंटरटेन करती रहूंगी, और बातें तो होती है लाजवाब हमारी। तो चलिए, देर किस बात की है, इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM, आप हैं सताक्षी के साथ और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

0: कुड़ी नशे से चढ़ गई।
1: गुड मॉर्निंग है जी, एक बार फिर से आपको रेडियो प्रसारणी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। वेल, बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, गाने भी होंगे, बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन हाँ हाँ, आज का दिन जिनके लिए खास है उन्हें हम कैसे भूल जाए। तो आपका है हैप्पी बर्थडे, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड वी विश कि आप जिंदगी की हर खुशी पाएं, हर पल गाते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए बिताएं। जिनकी आज है शादी की सालगिरह, उनके लिए तो दिन और भी खास है। आपको पता है, मेरे हिसाब से जब आपकी शादी होती है ना, तो आपका नया जन्म होता है। सब कुछ जिंदगी में नया होता है, आप जिंदगी की एक नई समझ रखना शुरू करते हैं, एक नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं जो उस दिन के पहले आपने शायद पहले कभी नहीं किया होता है, राइट? सो मेरे लिए बहुत ऐसा वाला होता है कि यार ये नया जन्म है इंसान का। तो आपका भी आज नया जन्म हुआ था, तो हैप्पी बर्थडे भी हुआ आपका। वेल, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा और इस जिंदगी में एक दूसरे का हाथ थामे यूं ही साथ साथ चलते रहिएगा। और जिनके लिए भी स्पेशल है, खास है आज का दिन, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत सारी विशेज हैं हमारी कि आप सबका दिन, आप सबका सबका सबका दिन आज बहुत खूबसूरत जाए। चलिए इसी विश के साथ शुरुआत करते हैं इट हैपेंस के इस अगले गीत की। हाँ, इसे एंजॉय कीजिए और लौट कर आइए, फिर बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM, क्योंकि आप है सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

वेलकम बैक, इट हैपन, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM पर। जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी पर आज फिर से आपके साथ हूँ कुछ बहुत ही गहरी और प्यारी बातों के साथ। वैसे केयरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम प्यार की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरों में सिर्फ आई लव यू कहना, साथ में घूमना फिरना या एक दूसरे को गिफ्ट देना आता है, होता है ना ऐसा? लेकिन केयरिंग इससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी एहसास है। जी हाँ, केयरिंग का मतलब है कि सामने वाले की छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें, उसके बिना बोले उसकी जरूरतों को समझ जाएं और जब वो थका हो या परेशान हो तो बिना कहे उसका साथ देना शुरू कर दें। तो केयरिंग जो है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी केयरिंग को चलिए आगे लेकर चलते हैं, मतलब हम गानों के साथ, क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं और आप निकल पड़िए कुछ बातों के साथ, उनकी बातें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दिखाइए कि आपको उनकी कितनी परवाह है। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

दोस्तों, हर दिल का अपना एक पैटर्न होता है। हर इंसान लव और रिलेशनशिप को एक ही तरह से एक्सपीरियंस नहीं करता है। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में सिक्योर फील करते हैं, उन्हें ट्रस्ट करना आसान लगता है, उन्हें लगता है कि अगर कोई उनसे केयर करता है या उनकी परवाह करता है तो वो केयर जेन्युइन है। लेकिन कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इतने सिंपल नहीं होते हैं। वो किसी से अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक फियर भी होता है। कभी उन्हें लगता है कि वो पर्सन उन्हें छोड़ देगा, कभी उन्हें लगता है कि वो पर्सन जेन्युइन नहीं है, कभी उन्हें लगता है कि शायद वो खुद ही किसी पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कई बार रिश्तों को थोड़ा सा गहरा कर देती हैं और कई बार रिश्तों की कमज़ोर कड़ी बनने की भी जो है वो वजह बन जाती है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप से पहले गुजर चुके हैं या कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में रहा है जिसने आपको ट्रस्ट नहीं किया या जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, अगला इंसान जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, आपका दोस्त, आपका पार्टनर, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ कोई भी, आप उसे पहले की तरह मत सोचिए। मतलब पहले वाले इंसान से कंपेयर मत कीजिए ताकि आप एक बेटर रिलेशनशिप जी सके, राइट? आइए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

गाना की हैट्रिक इस वक्त आप सुन रहे हैं दोस्तों सताक्षी के साथ 3 1701 AM पर। तीन बैक टू बैक ट्रैक्स जो आज के दिन को खूबसूरत कर रहे हैं क्योंकि इन गानों को आप गुनगुना रहे हैं, वो भी सताक्षी के बिना आपको डिस्टर्ब किए। तो चलिए इस अगले ट्रैक को भी जल्दी से सुनवाऊंगी और कम बोलूंगी ताकि आप इसे भी इंजॉय करें। सुनते रहिए ठाकुर सताक्षी के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी पर।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन पर गानों की हैट्रिक। जी हाँ, यही सेगमेंट हमारा इट हैपेंस में इस वक्त चल रहा है, जहाँ तीन बैक टू बैक ट्रैक्स आप सुनते हैं। दो गाने हम ऑलरेडी सुन चुके हैं और तीसरा गाना जो है वो आपको, अगर आपने अभी तक इसे नहीं गाया है, मतलब अभी तक के गानों को नहीं गाया है, तो इसे आप जरूर गुनगुनाने वाले हैं। कौन सा ट्रैक है जरा सुनिए। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इस ट्रैक के बाद। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतला तो कमाई करो, तो हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट का रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

इट हैपेंस एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM। वैसे घर, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक सुकून, एक सेफ प्लेस, एक ऐसी प्लेस जहां पर जाने के बाद फिर कुछ और याद ना रहे। वैसे बात भी सही है कि घर, ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले मन में सुकून आना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां इंसान दुनिया से हार कर लौट भी आए तो उसे सहारा मिले। लेकिन हर किसी के लिए घर हमेशा सुकून नहीं होता है। कई लोगों के लिए घर ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाता है भाई, और इसी वॉर का, इसी युद्ध प्लेस का नाम है घरेलू वॉर्स, घरेलू कलेश, या फिर घर पर होने वाले आर्ग्यूमेंट्स। जी हाँ, और ये घरेलू कलह जो है ये अचानक नहीं होती है, ये किसी एक दिन की लड़ाई भी नहीं होती है, ये धीरे धीरे पनपती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से होकर जिंदगी की बड़ी थकान बन जाती है, और वो सबसे दर्दनाक बात तब बन जाती है जब कोई बाहर का दुश्मन आपसे घरेलू कलह तो करता नहीं है, वहां जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपके अपने कर रहे हैं। एक इंसान जब बाहर से थक हार के आता है और उसे घर पे सुकून ना मिले तो सोचिए कैसा लगेगा, है ना। आइए फिलहाल और बातों के साथ आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन एक अगला ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1।

जी हाँ, इट हैपेंस आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आज आपके साथ बात हो रही है सुबह आप ही की जिंदगी पर। वैसे आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल क्या है, आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल है लाइफ में करना क्या है। और सबसे फनी बात ये है कि ये सवाल सबके पास है पर आंसर किसी के भी पास नहीं है। स्कूल खत्म होता है, कॉलेज आता है, लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं अब क्या बनना है, कहाँ जाना है, फ्यूचर क्या है, क्या करना है, और हम खुद ही ये सोच रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि भाई मुझे करना क्या है। सबको आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं पर आप खुद से ये क्लैरिटी नहीं लिए हुए हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आप खुद दूसरों को देखते हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में है कि करना क्या है, तो आप थोड़ा सा ठहरिए और मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, पैसा आपको किसी भी फील्ड में काम करने के बाद आज की डेट में मिलने वाला है, और आज की डेट में जब सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, तो पैसा कमाने के सोर्सेज भी बहुत सारे हैं। लेकिन वो काम जो आपका पैशन बन जाए उसे करना आपको लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं देगा, आपको लाइफ में बहुत आगे भी लेकर जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा इस बात पर भी अपने करियर को चूज करते समय ध्यान दीजिए कि आपको किस काम को करने में मजा आता है और उसे ही अपना करियर बना लीजिए। आइए फिलहाल एक ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

0: रही हूँ।
1: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक Under the Stars, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸਮੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन AU.LotusFX.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जी वेलकम बैक एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर ओवर एम ते संदेश अलग दिन बने हुए हो। देखो गल यह हैगी है कि कहानी थोड़ा दसती है, कहानी नो डाउट बहुत ज्यादा सोहनी हैगी है। जिस तरीके दे नाल मैं तुहानू दस्सिया ना कि वण तो पहला ते वण तो बाद थी कहानी, हुण जे एक्टिंग दी जे गल करिए ना ता युवा कीनू गरेवाल दे किरदार विच वेदांग रैना ने उम्मीद तो ज्यादा वधिया परफॉर्मेंस दिती है। उधर अफसाना दे किरदार विच शर्वरी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। नसीरुद्दीन शाह जो बुजुर्ग कीनू बने हन उन्होंने फिल्म विच डायलॉग घट बोले ने पर उन्हां दी एक्टिंग हमेशा दी तरह कमाल दी हैगी है। दिलजीत दोसांझ नूं देख के तुहानू सुकून महसूस होगा, उन्हां दे संवाद भी दिल छू जांदे ने। बाकी किरदारां दा भी कम वधिया हैगा। फिल्म विच धुरंधर फेम दानिश पंडेर भी हैगे ने जिन्हां दा स्क्रीन टाइम घट सी, इस दे बाद भी उह अपने किरदार नाल इंसाफ करदे नजर आए ने। मनीष चौधरी ते रजत कपूर दी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा वधिया है।

0: जी अनु जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्लूसोनी 101.1 FM ते चर्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक्टिंग की गल कर ली है कि एक्टिंग बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, हुण किते ना किते कमी तो हुंदी है ना, तो डायरेक्शन की गल कर लेने। देखो यकीनन हर बार निर्देशक इम्तियाज अली दे दर्शकों दी उम्मीदा का बोझ चुक पाउणा सौखा नहीं हुंदा। फिल्म दे फर्स्ट हाफ की कहानी तुहानू घट समझ आउंदी है, किरदारा नू पनपण विच समा लगता है, ते तुहानू लगता है कि फिल्म बिखर रही है। शुरुआत दे कई सीन्स तुहानू किसी नावल दे लई होए मतलब महसूस होंगे उस तरह के नाल, पर जिवें ही फिल्म का सैकेंड हाफ शुरू हुंदा है ना, तुहानू महसूस हुंदा है कि इम्तियाज अली वापस आ गए है कि नहीं। दूसरे हाफ विच वंड दा दर्द, परिवारां दा बिखरना, मुहब्बत दा बिछड़ना, तुहानू सब कुछ देखने मिलता है जो थानू रुलाऊगा भी तो बहुत कुछ महसूस कराऊगा। इम्तियाज ने सैकेंड हाफ विच इमोशंस का जो खेड रचा है ना, वो इस फिल्म की जान है की है।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं ये चीजां सीखियां, तो तुहानू दसणियां मेरा फर्ज है। Swear to you.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 ते जी आज संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो इम्तियाज अली दी फिल्मां दी गल कर रहे हैं कि तो जी मैं तुहानू पहला कहा सी ना कि कमी ते कुछ ना कुछ खास हुंदा ही हुंदा है। कमियां दी जे गल करिए उस तो पहला म्यूजिक दी गल कर लैने। म्यूजिक हैगा जेड़ा इस फिल्म दा बहुत ही ज्यादा शानदार हैगा, बहुत खास, बहुत ही वधिया। मतलब इन्ना क वधिया हैगा कि तुसी वार वार कहोगे गाने सुनोगे, जिवें जिन्ने क गाने पहला भी हो गए सी ते उसनूं बहुत ज्यादा प्यार हैगा जिहड़ा ओह मिलिया ही मिलिया हैगा। स्टोरी बहुत सोहनी है कि इस दे विच कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ट्रेलर देख के ही पता लग गया सी कि स्टोरी किन्नी ज्यादा वधिया है। स्क्रिप्ट ते जिहड़े सीन्स नूं बारीकियां दे नाल समझाया गया है, यानी कि विजुअल्स ने जिहड़े बहुत ज्यादा शानदार ने। सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल दी हैगी है, कैमरे दा काम बाखूबी कीता गया हैगा। फिल्म दा जिस तरीके दे नाल पेश कीती गई है वह बहुत ज्यादा वधिया हैगी है।

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਮੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: मुंडा साधुआ।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
4: 0400-234-235.
5: Get ready, Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग, तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
6: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
8: For aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: Hi, this is Salman Khan.
11: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
12: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
14: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
15: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
16: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: 99.9% प्योर मिल्क फैट्स है और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0411270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 0411270035। रिमेम्बर द नंबर इज 0411270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: suku, suku.
1: Ay, ay, ya, karun mein kya suku, suku. Ay, ay.

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इवनिंग वाइब की शुरुआत जो है वो हमेशा मजेदार होती है। प्रोग्राम भी हम आपके लिए एकदम मजेदार लेकर आते हैं, लेकिन आज आपने देखा दिन कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, जिस दिन का इंतजार हम मंडे से करते हैं और फिर ट्यूसडे को भी करते हैं और फिर वेडनेसडे को भी करते हैं और फिर थर्सडे को भी करते हैं, वही दिन आ गया है। जी हाँ, सो वही 4 दिन के बाद जो दिन आता है, जो सुकून की सांस हमें पहुंचाता है, जो हमें लगता है कि ओह यू नो व्हाट, जितने भी सारी प्लानिंग हमने की थी अब फाइनली वीकेंड पे पूरी हो पाएगी। लेकिन फ्राइडे पता ज्यादा स्पेशल क्यों है। ऑल्दो फ्राइडे को भी आपको ऑफिस आना होता है, फ्राइडे को भी आपको काम करना होता है, फ्राइडे इज अ वर्किंग डे, बट स्टिल फ्राइडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वर्किंग डे, बिकॉज फ्राइडे के बाद आता है वीकेंड। और वो वीकेंड की जो सुगबुगाहट होती है ना, वही काफी होती है फ्राइडे को अच्छा बनाने के लिए। फ्राइडे की शाम जो है वो सुहानी होती है। फ्राइडे की शाम के लिए हमने इतनी सारी चीजें प्लान की होती है, गेट टुगेदर्स लोग प्लान करते हैं, कितना कुछ प्लानिंग होती है, राइट। सो वो फ्राइडे ही कर सकते हैं क्योंकि सैटरडे को सुबह उठने का झंझट नहीं है, सैटरडे को सुबह काम पे जाने का झंझट नहीं है, तो फ्राइडे की शाम एकदम हमारे नाम। जी हाँ, सो आइए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैप्पी फ्राइडे आप सबको, और अब जरा हेल्दी रिचुअल के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है हेल्दी रिचुअल जो है वो है हमारा डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। और लंबी गहरी सांसें हम लेंगे यहाँ पे, दुनिया की जद्दोजहद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और साथ में तैयार करेंगे हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम के लिए। तो आइए सबसे पहले लेते हैं लंबी गहरी सांसें। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं नैनों की, मतलब कि आंखों की। आपको तो पता ही है शुरुआत हमेशा आंखों से होती है। किसी की जिंदगी बन जाती है, किसी की बिगड़ जाती है, किसी की मोहब्बत सवर जाती है और किसी को ऐसी मोहब्बत हो जाती है जो कभी पूरी नहीं होती। सो आंखों से सब चीजों की शुरुआत होती है। आंखों से आप किसी की रूह में झांक सकते हो। यहां पर हम उन्हीं आंखों के बारे में

जी हाँ दोस्तों, बात में दम है। अगर मैं हूँ तेरा तू है मेरी, तो काहे की पर्दादारी है। रंग तेरा ऐसा चढ़ा कि सारी चीजों पर भारी है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, हमें लग रहा है तुमने यहाँ पे भी थोड़ी सी लिरिक्स में छेड़ाछेड़ी कर दिया। अरे वो तो हो जाती है ना, अब हर किसी को सब कुछ थोड़ी याद रहता है। ठीक है, आपकी आरजे निविया को लिरिक्स थोड़े कम याद रहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि फीलिंग्स जो है मैं आप तक नहीं पहुंचा पाई हूँ। आप तक पूरी फीलिंग्स पहुंच गई है। और यहाँ पर अब सीधा चलते हैं, मौसम के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मौसम के बारे में बात करने के पीछे रीजन बहुत ही पक्का है। सबसे पहले तो हमारे प्लान्स, हमारे मूड, सब चीजों पर अफेक्ट करता है। मौसम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, और गड़बड़ हो तो सब कुछ फीका फीका लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, जो कि 23 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन अभी की बात की जाए तो 21.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 21.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। दोस्तों ये तो थी टेम्परेचर की बात, वो भी दिन में। रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाओगे। बारिश की सिचुएशन वैसे ही बनी हुई है जैसे कल थी, थोड़ी थोड़ी बारिश कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी लगती रहेगी बीच बीच में। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऐसी बारिश आपको पूरा का पूरा हफ्ता देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, सो वैसे ही रहा यहाँ पर कुछ सिचुएशन। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की, तो वो है एकदम एक्सीलेंट, ना नॉट जस्ट फेयर बट एक्सीलेंट, खूबसूरत। और इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज, और वो है सैटरडे और संडे। मतलब ऑफ कोर्स आज के बारे में बात हो गई है, लेकिन सैटरडे और संडे के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि वीकेंड पे कैसा रहने वाला है मौसम, ये तो जानना जरूरी है। तो सैटरडे को बारिश होने के चांसेस हैं, अगेन 60% चांसेस है विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 mm तक बारिश हो सकती है। लेकिन संडे को जो है वो 30% चांसेस है, और बादल रह सकते हैं आसमान में, लेकिन बारिश मुझे कम ही दिख रही है, यानी कि 30% चांसेस है, जो कि काफी ना के बराबर है, बट कहीं कहीं पर हो सकते हैं, लाइक नॉर्थ ब्रिस्बेन में। आपको तो पता है कहीं हो ना हो वहां तो हो ही जाती है बारिश। सो या, ऐसा ही है मौसम का हाल। सैटरडे को नहीं बट संडे को आप, मुझे लगता है, बाहर अच्छा से जा पाओगे, आउटिंग कर पाओगे, और थोड़ी बहुत धूप भी जो है वो आपको नजर आने वाली है। सो उसके लिए प्लान बनाइए, और ऑफ कोर्स अपनी आरजे निविया के गीत सुनिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत जो है वो प्ले करने वाली हूं।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है तो जरा आपकी फरमाइशों की बात भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं और मैं उन्हें प्ले करने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहती और ना ही मैं अपने लिसनर्स को

इंतजार करवाना चाहती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने फेवरेट गाने, पसंदीदा गाने, अजीज गाने कर सकते हैं फरमाइश हमारे साथ इस प्रोग्राम में। और आपको करना क्या है उसके लिए, आपको अपना फोन उठाना है और नंबर डायल करना है, और वो नंबर है +91828887107 आई रिपीट +91828887107। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हम रेडी हैं प्ले करने के लिए अपनी पहली फरमाइश। जी हाँ, और ये जो गाना है ये फरमाइश किया गया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी ने। और यहाँ पर जो गाना उन्होंने किया है फरमाइश, उसका नाम है दिल धड़के नजर शर्माए। आए हाय, क्या बात है। जी हाँ, थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए। और यहाँ पर आपने जो गाना है वो तो लता जी का किया हुआ है फरमाइश, सो ऑफ कोर्स हम इसे बहुत ही अच्छे से प्ले करने के लिए एकदम तैयार हैं। बस आप ऐसे ही अपनी फरमाइशों का सिलसिला जारी रखिए, हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को। और बिना देर किए आपका ये गाना, ये खूबसूरत सा गाना।

जी दोस्तों, मुझे इतना पता है कि इस दुनिया में अगर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की बात हो तो कोका कोला को कोई भी मात नहीं दे सकता। जी आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा अब क्या हुआ। वेल, कुछ वक्त पहले हमने आपको कोका कोला और इसकी स्टोरी के बारे में बताया था। हमने बताया था कि कैसे उसकी वो जो ग्लास बॉटल थी वो रेज बन गई थी और अब फीफा वर्ल्ड कप को कैश करने की सोच रहे हैं कोका कोला वाले। जी हाँ, आप लोग बोलोगे अच्छा वो कैसे। सो कोका कोला का एक बहुत ही स्मार्ट मूव यहाँ पर आया है। उन्होंने फीफा से पहले एक नया कारनामा करके दिखा दिया है। उन्होंने एक नई बॉटल निकाल दी है कोका कोला की, जिसका प्राइस है $2.50 और ये है फुटबॉल शेप्ड बॉटल। और ये इसलिए उन्होंने निकाली है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। जी हाँ, अब फीफा वर्ल्ड कप जब शुरू हो रहा है तो अगेन वो चाह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ फीफा ही इससे क्यों कमाई करे, हम भी करेंगे। आप लोग बोलोगे कि नीवा शर्मा, कोका कोला को कमाई की जरूरत भी है? हर दिन वो इतना तो कमाते हैं। अरे किसने कहा कि कोई कमा रहा है तो वो ज्यादा नहीं कमा सकता, और वो ज्यादा कमा रहा है तो उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। सो कोका कोला ने यहां पर देख लिया कि ऐसे बात बनने वाली है और वो भी बड़े ही जबरदस्त तरीके से बनने वाली है। ऑल्दो कोका कोला को वैसे भी लोग बहुत क्वांटिटी में पीते हैं। इज इट अ गुड ड्रिंक? नो इट्स नॉट, बट स्टिल पीपल हैव इट। या एग्जैक्टली, यस दे हैव इट एवरी ऑलमोस्ट एवरी डे, और इतने सारे लोग हैं जो कोक के फैन है। बट द थिंग इज कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये अभी भी मैं कहूंगी। बट या जो स्टोरी है वो हमेशा से बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है कोका कोला की, और यहां पर इनका ये जो मूव है, मतलब अगर आपने वो फुटबॉल शेप्ड बॉटल अभी तक नहीं देखी है तो जरूर अपने नजदीकी मार्ट में जाइए, और अगर आप भी कोका कोला के फैन है तो जरूर देखिए। मैं खरीदने के लिए आपको नहीं बोलूंगी, पर देखिएगा जरूर वो कैसी लग रही है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करने के लिए कोका कोला भी यहां पर मैदान में उतर आया है। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: Hi, this is Amitabh Bachchan.
8: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाई मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियली शुरू हो गया है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो। जी हाँ, इज देयर एनी फेवरेट प्लेयर जिसको आप ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि शकीरा और बुना बॉय की हेडलाइन परफॉर्मेंस के साथ ये जो है फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया और उसके बाद जो है सी ऑफ कलर, लाइट्स एंड म्यूजिक अहेड ऑफ किक ऑफ People could see। जी हाँ, मतलब लोग जो हैं वो एकदम खूबसूरत जो है वो कपड़ों में नजर आए, और वो कपड़े कौन से थे? वो ग्रीन, येलो एंड मोस्टली ग्रीन में नजर आए, क्योंकि किक स्टार्ट हो गया है ऑफकोर्स फीफा वर्ल्ड कप, और फीफा वर्ल्ड कप की जब भी बात होती है तो मैं थोड़ा सा इमोशनल फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेवरेट प्लेयर का कहीं ये लास्ट फीफा तो नहीं है। जी हाँ, अब आप लोग गेस कर सकते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड हिमसेल्फ, दी रोनाल्डो। सो ऑफकोर्स रोनाल्डो इज परफॉर्मिंग, ऑफकोर्स उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी जो है वो टीम में नहीं है अभी इस वक्त, बट द थिंग इज कि उन्होंने फिर भी जो है वो पूरे अच्छे से ठान लिया है कि वो यहाँ पर अच्छे से काम करने वाले हैं। उनके लिए ये फीफा जो है अगेन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अगला फीफा वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे नोबडी नोज। एंड सेम गोज फॉर मेसी, मेसी का ये लास्ट या ये लास्ट जो है वो फीफा हो सकता है, एंड ही इज द डिफेंडिंग चैंपियन। जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप था वो जीत गया था अर्जेंटीना, एंड पीपल वर सो हैप्पी, या दे वर सो हैप्पी। एंड द थिंग इज कि मेसी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और उन्होंने एग्जैक्टली उसको अनाउंस नहीं किया था, बट फिर भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था अपने जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मेसी इज गोइंग टू रिटर्न, एंड पीपल वर सो हैप्पी। पीपल वर लाइक कि ओके, द legend is here and we can win it again. जी हाँ, so they are the defending champions, and yeah, let's see किसके किस्मत जागती है इस बार FIFA World Cup में। आप मुझे बताइए किसके आप फैन हो और किस कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हो, या किस एग्जैक्टली प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज आई रियली रियली रियली वांट टू नो। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
11: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hu unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
12: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
11: Acha? Wo kya?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
13: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया। मतलब सबसे बड़ा काम कर दिया, आप लोग बोलोगे ऐसा क्या कर दिया। मतलब मुझे ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या हो गया। वेल, अभी कल ही की बात है, मैं पढ़ती हूँ कहीं पर कि फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन में हैव हायर IQs देन siblings, और ये studies ने prove कर दिया है। And I am the first born, so of course I love this research. मुझे तो बहुत ही मजा आया। And guess what? मैंने फटाफट अपने छोटे भाई को ये भेज दिया कि देख, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा IQ जो है तुझसे ज्यादा अच्छा है, मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ, तू कभी भी नहीं मानता। बट ठीक है, वो कभी भी नहीं मानता था। मैंने बोला देख, अब मैं नहीं बोल रही हूँ, स्टडी ने प्रूव कर दिया। सो मैं क्या कह रही हूँ, आप सब भी अपने छोटे भाई बहनों को भेज दीजिए। मुझे बताया, जो बड़े वाले भाई बहन होते हैं ना, जो सबसे बड़े, जो ओल्डर चाइल्ड होता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा समझदार होता है। उनको बहुत सारी चीजों में समझना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले तो बोल देते हैं, पेरेंट्स तो बोल देते हैं, अरे छोटा है, अरे करने देना, तो क्या हो गया, छोटा है, अरे मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है सुनते सुनते। और मुझे ऐसा लगता था कि अरे भाई, कभी तो फायदा होना चाहिए बड़े होने का भी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि बड़े होने का फायदा है, क्योंकि IQ तो हमारा ही अच्छा है, राइट? वो छोटे हैं और उनका IQ भी छोटा रह गया। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, यू आर सो पेटी। वेल, आई एम पेटी इन अ वे। सो स्टडी ने प्रूव कर दिया है, और स्टडीज में ये पता चला है कि फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन टेंड टू स्कोर स्लाइटली हायर ऑन IQ टेस्ट देन देयर यंगर सिबलिंग्स, एडिंग फ्रेश एविडेंस टू द लॉन्ग डिबेटेड बर्थ ऑर्डर थ्योरी। ये पब्लिश हुआ है इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, यानी कि PNAS में। और रिसर्च ने जो है ये खोज निकाला है कि स्मॉल बट कंसिस्टेंट ड्रॉप इन कंजंक्टिव स्कोर्स विद ईच बर्थ ऑर्डर पोजिशन। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सिंपल हो सकती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत ज्यादा जो है अंतर नहीं है इस सिचुएशन में, बट यहाँ पर कुछ जो है वो अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे बर्थ ऑर्डर जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे जो सबसे बड़े जो बच्चा होता है, सबसे बड़ा जो भाई बहन होता है, उसके बाद जो पैदा होते हैं, धीरे धीरे उनके जो है वो IQs जो है वो नीचे को जाते रहते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा लेड बैक होते हैं। मतलब उनको लगता है कि सब कुछ तो हो जाता है भाई, सब कुछ। मतलब मैं हमेशा ये जानना चाहूंगी आपसे भी, अगर आप अपने घर में बड़े हो तो क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे साथ होता रहा है हमेशा से, कि आप जो है वो हमेशा सारी चीज चीजें जो है वो मेनली करते रहे हो, आपने सारा जो है वो रास्ता बना दिया, छोटे जो है वो मजे से उसको फॉलो कर लेते हैं, मतलब उनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बड़ों को सारी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो बड़ों को वो प्यार भी सबसे ज्यादा मिला होता है पहले बिकॉज दे आर द फर्स्ट चाइल्ड, बट हमारा IQ, हमारी एडजस्टमेंट स्किल्स, हमारे मेच्योरिटी लेवल, द विजडम, एवरीथिंग सबसे ज्यादा जो है वो बड़े बच्चे में होता है। सो आप मुझे बताइए कि आप इससे अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैंने तो अपने भाई को भेज दिया है। मैं कहती हूँ लगे हाथ आप भी अपने भाई और बहन को भेज दीजिए कि देख भाई मैं कहता था तू मानता नहीं था, या देख बहन मैं कहता था तू मानती नहीं थी, अब देख यहाँ पर देख प्रूव हो गया है कि मैं सिर्फ एडजस्ट अच्छे से नहीं करता हूँ बल्कि मेरा IQ भी लेवल अच्छा है। यहाँ पर आप लोग बोलोगे नीवे शर्मा पैटी तो तुम हो, हाँ हूँ मैं पैटी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो अजूबे हैं, और आप लोग बोलोगे मतलब बहुत तरह के अजूबे हैं। और अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ, एक स्टोरी जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर, और वो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि 22 साल का है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए पूरा का पूरा माहौल बनाता है। आई मीन इट्स अ प्रपोजल स्टोरी, और आपको तो पता ही है जब भी कोई प्रपोजल बहुत ज्यादा अजब गजब और एकदम यूनिक होता है, वी टॉक अबाउट इट, या वी लिटरली टॉक अबाउट इट ऑन आवर शो। सो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये 22 साल का व्यक्ति जो है वो बड़े ही अच्छे से पूरा को पूरा प्रपोजल प्लान करता है, लड़की के घर वालों को बुलाता है, सब फ्रेंड्स को बुलाता है, और वहां पर फोटोग्राफर को भी बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पॉप करता है, रिंग निकालता है, और वो रिंग जो है अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रखता ही है कि उसे अपने पेट में कुछ हलचल फील होती है। आप लोग बोलोगे क्या है, पेट ही खराब हो गया प्रपोजल के टाइम पे? ना ना ना, पेट खराब नहीं हुआ। जी हाँ, पेट खराब होता फिर भी सिचुएशन डिफरेंट थी, जो हुआ और भी ज्यादा गड़बड़ था। सो वो रिंग निकाल ही रहा था कि तभी उसे लगता है कि ओ माय गॉड, ही नीड्स टू थ्रो अप। जी हाँ, मतलब उसे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है, और उसकी जो फियांसे है, आई मीन नाउ फियांसे बट देन गर्लफ्रेंड, वो बड़े ही अच्छे से देखती है कि ये क्या हुआ। बंदा वहीं पर रिंग छोड़कर भागता है और फटाफट जाके झाड़ियों में पहले अपना काम करता है, फिर उसके बाद जो है वो अपना पूरा का पूरा प्रपोजल जो है वो कंप्लीट करता है। अब जो लड़की है जो कि एकदम पूरा प्रपोजल के लिए रेडी है, पूरा सेटअप रेडी है, सब कुछ, वो रिंग विंग छोड़ के और प्रपोजल के पीछे, प्रपोजल के बारे में भूल के फटाफट पहले अपने बंदे को जाके चेक करती है, अपने बॉयफ्रेंड को जाके चेक करती है, सब ठीक है ना, मतलब क्या क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, आई थॉट यू रियली लाइक्ड मी, आई थॉट यू वांटेड टू प्रपोज मी। आई मीन ये वाली बातें उनके बीच हुई नहीं होंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो नर्वसनेस की वजह से, मतलब बंदा इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि उसको थ्रो अप करने की जरूरत पड़ गई, मतलब उसको लिटरली उल्टी ही आ गई। अब आप लोग बोलोगे कि वाह नहीं भैया वाह, ये तो डेफिनेटली बहुत ही अजब गजब प्रपोजल था। हाँ, मतलब हमने इतने सारे प्रपोजल्स के बारे में सुना है, कहीं पे पीछे से पापा आके इशारा कर देते हैं से नो, कहीं पे कोई बंदा जो है वो एकदम पूरा टैंक्स के बीच में, जो टैंकर्स होते हैं उसके बीच में जाके प्रपोज करता है, बट ये वाला सबसे ज्यादा खतरनाक था। ऑफ कोर्स बंदा चाहता तो अच्छे से ही करना था, बट गड़बड़ हो गई, एंड नर्वसनेस की वजह से किसी के साथ भी गड़बड़ हो सकती है, सो इट्स नॉट हिज फॉल्ट। बट या ये स्टोरी वायरल हो रही है कि बंदा प्रपोज करता करता भागा पहले, बिकॉज ही वॉज सो नर्वस दैट ही नीडेड टू डू इट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर, QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई, खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। क्या हो रहा है दुनिया में, वॉर फ्रंट पे और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल वर्ल्ड में, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जी हाँ, सो अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हाँ, सो सबसे पहले भारत की खबरों से शुरुआत हो रही है। ओमान कोस्ट के पास अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक बयान में कांग्रेस ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओमान के तट पर 3 भारतीय नाविकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करती है। हम उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि अमेरिका की उन लापरवाह सैन्य कार्रवाइयों को भी कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में आम नागरिकों के जहाजों और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री ने बार बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को एक कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। वे अपनी जिम्मेदारी से तब पीछे नहीं हट सकते जब वही संबंध भारतीयों की जान और हितों की रक्षा करने में नाकाम साबित होते हैं। बुधवार यानी 10 जून को एम्प्टी स्टेबेलो जहाज पर हुआ हमला, इसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इस हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की खबर है, बाकी 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बीते 4 दिनों में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले कम से कम 3 जहाजों पर हमला हुआ है। 8 जून को एमटी मरीवेक्स जहाज पर हमला हुआ था जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे, हालांकि बाद में इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। ओमान स्थित भारत के दूतावास ने इसकी पुष्टि भी की थी।

0: धीरे चलिए।
1: जी हाँ दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर ईरान ने की ये मांग। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने खाड़ी क्षेत्र में भारत के कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वकाई ने लिखा कि भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के हमलों में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ये हमला अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती की नीति का स्पष्ट सबूत है। उन्होंने कहा, हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और मित्रों के प्रति सहानुभूति जताते हैं और भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका के गैर कानूनी व्यवहार के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही अमेरिकी कार्रवाई समुद्री आवाजाही की आजादी को भी खतरे में डाल रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बीते 4 दिन में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले इन जहाजों पर हमला हुआ। वहीं इस जहाज पर सोमवार यानी 8 जून को हमला हुआ था, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और ट्रंप ने ईरान पर हमला रोका, समझौते को लेकर किया यह दावा। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, एट दिस पॉइंट अब तुम मत ही बताया करो कि कोई समझौता हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इतने दिनों से सुन रहे हैं समझौता हो रहा है, बट है कहाँ। वेल, बात सही है कहाँ, वी डोंट इवन नो। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक शुरुआती समझौता जल्द ही होने वाला है। उन्होंने कहा है कि इस वजह से ईरान पर हमले रोक दिए गए हैं। गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे समझौते के मुताबिक ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे और इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इसलिए यह बहुत बड़ी बात है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकई ने सरकारी टीवी पर कहा कि समझौते की खबरें सिर्फ अटकलें हैं और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। ट्रंप पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं कि दोनों देश विवाद खत्म करने के लिए समझौते के करीब हैं। इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वे ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई के लिए एक अहम समुद्री रास्ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने अभी कल ही कहा था, कुछ घंटे पहले कहा था कि हम तो ईरान पर सारे हमले करने वाले हैं, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स, उनकी मिलिट्री सब खत्म हो चुकी है और अब हम पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देंगे, उनकी गैस और ऑयल सप्लाई पर अपना कब्जा कर लेंगे। वेल ऑफकोर्स या उन्होंने ये कहा था। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, ये इंसान थकता नहीं है, वेनेजुएला को लूट लिया, अब ईरान को भी लूटने की सोच रहा है। यस, मुझे तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से ये तेल और गैस के पीछे पड़े हैं, ये गैस निकालते नहीं है और तेल खाते जरूर है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट या, मतलब जिस हिसाब से इनको तेल चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि तेल इनको खाने पीने के लिए चाहिए। आई मीन, इसके अलावा तो आई कांट सी एनी सेंस हियर। जी हाँ, और वहीं वो बोल रहे हैं कि ईरान तो पूरी तरह से परमाणु हथियार बंद करने के लिए, बनाने के लिए पूरी तरह से जो है वो कभी भी नहीं बनाएगा। वेल, अभी कल ही की बात है, ईरान ने कहा था कि वो बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो बनाने वाले हैं। जी हाँ, सो अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, बाकी सब ठीक है पर सच कौन बोल रहा है? वेल, सच डेफिनेटली इस दुनिया में कोई भी बोल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो है तैयारी स्पेसएक्स के आईपीओ की, जो कि 12 जून को आने वाला है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरी तरह से जो माहौल तैयार किया जा रहा है वो है स्पेसएक्स के आईपीओ के लिए, जिसके लिए 1.40 समथिंग ट्रिलियन के वैल्यूएशन को टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे में यही सब चलता रहा, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई, तो फिर कहां होगा? मतलब ये तो वही हो रहा है, दो बिल्लियां लड़ रही है और फिर क्या ही होगा, मतलब बंदर भी बाजी नहीं मार पाएगा, ये वाली वो वाली सिचुएशन है। सो यहां पर इसी के लिए ट्रंप जो है वो बार बार अपने बयान जो है वो बदल रहे हैं, और यहाँ पर ईरान जो है वो उनको तभी कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। ऐसी कोई चीज हो नहीं रही है, हमारा कोई भी समझौता नहीं हुआ, ये बंदा ऐसे पागलपंती कर रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ गड़बड़ ही कर रहे हैं। जी हाँ, इकलौती एक जगह है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है। आप लोग बोलो, है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ अच्छा भी हो रहा है? वेल, आपको बताएंगे, लेकिन एक और मजेदार से गाने के बाद।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं क्या आप देख सकते हो थिएटर्स में इस वीकेंड। जी हाँ, फ्राइडे है, मतलब नई बॉलीवुड रिलीजेस आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैं वापस आऊंगा, जो कि है एक मूवी ड्रामा पीरियड एंड रोमांटिक, मतलब एक प्रेम कहानी जिसमें दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे उनको बिछड़ना पड़ता है, उनको अलग होना पड़ता है क्योंकि मुल्क अलग हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन फिर उन्हीं के डिसेंडेंट्स जो है उनके उस मोहब्बत को ढूंढने वापस उस कंट्री जाते हैं। इट्स अ स्टोरी अबाउट इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन, और उसी वक्त ये प्रेम कहानी जो है वो पनपी थी। यहां पर इसमें आपको मिलेंगे वेदांग रैना, इसमें आपको मिलेंगे शर्वरी वाघ, और इसमें आपको दिलजीत दोसांझ मिलेंगे। एंड आई डोंट नो, बट आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। आई हैवंट वॉच्ड दिस मूवी, बट अगेन आज ही रिलीज हुई है, मैं कल देखूंगी और फिर मैं इसका रिव्यू भी करने वाली हूं। वही कंगना रनौत की एक्टिंग के अगर आप फैन हैं तो शी इज हियर विद द बैंग अगेन। ड्रामा हिस्टोरिकल थ्रिलर, ये है उनकी नई मूवी का जॉनर। और

0: कह सकते हैं कि इसमें वो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। वेल, कंगना रनौत कौन सी एक्टिंग बेकार करती है, सब कुछ तो अच्छी करती है वो, राइट? सो भारत भाग्य विधाता है उनकी मूवी का नाम। इफ दैट इज योर जॉनर, गो फॉर इट। एंड इफ यू रियली वांट टू वॉच इट फॉर जस्ट कंगना अलोन, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट। इसी के साथ यहाँ पर एक और मूवी है जो कि आपको वैसी ही फीलिंग दिलाने वाली है, एंड इट्स अ मूवी गवर्नर, जो कि मनोज वाजपेयी की मूवी है। अगेन ड्रामा हिस्टोरिकल थ्रिलर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल हिस्टोरिकल थ्रिलर्स जो है वो सबसे ज्यादा फेमस हो रही है, राइट? सो यहाँ पर जो है ये 1990s के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में है, एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट गवर्नर रमन, जो उनकी कहानी है। और क्या है कहानी, मनोज वाजपेयी अपनी क्राफ्ट में कितने बढ़िया है, कितने ज्यादा मतलब वो बेस्ट हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सो ये है कुछ मूवीज जो आप देख सकते हैं जो कि इस हफ्ते रिलीज हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते, है जवानी तो इश्क होना है, डेविड धवन की मसाला पिक्चर्स के। अगर आप फैन हैं तो गो फॉर इट। और इसी के साथ वरुण धवन और मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की इस केमिस्ट्री का मजा लीजिए। इसी के साथ चांद मेरा दिल भी आप देख सकते हैं, जो कि अगेन इट्स नॉट अ रोम कॉम, इट्स अ ड्रामा म्यूजिकल रोमांटिक। पिछला साल अच्छा था इन मूवीज के लिए, ये कैसा होगा, विल सी टू दैट। इसी के साथ इसमें अनन्या पांडे और आपको लक्ष्य सेन देखने को मिलने वाले हैं। कुछ हॉलीवुड मूवीज भी हैं जो आप देख सकते हैं, उसमें है क्या, ऑफ कोर्स रिटर्न ऑफ द जंगल एंड ही मैन आप देख सकते हो। और रिटर्न ऑफ द जंगल इज एन एनिमेटेड मूवी, कॉमेडी एनिमेशन एंड फनी मूवी, यू कैन गो विद योर किड्स। सो या डिसाइड कीजिए कौन सी मूवी की तरफ आप जाना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: हेलो हेलो हेलो साहिबा कदरदार,
2: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
3: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए, कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए।
1: पैसा देख, तमाशा देख,

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का, जो कि है हमारा फेवरेट सेगमेंट। और आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वेल, मैं बात कर रही हूँ हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड के, मतलब पुराने गाने, पुरानी बातें, पुराने किस्से, हाँ वो सौगाते हैं, मतलब क्या कहा जाए। मतलब मेरा ना मूड अच्छा हो जाता है जब मैं ओल्ड इज गोल्ड के बारे में बात करती हूँ और उसको उसमें हम जो एंटर करते हैं। सो यू नो व्हाई आई डू दैट, राइट? सो यू लव इट, आई लव इट। सो आइए करते हैं इसकी शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त गाने के साथ, और गाने का नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। जी हाँ, जान हथेली पर ले आए रे। आप लोग बोलोगे निवेश शर्मा बाकी सब ठीक है, गाने का नहीं, बिल्कुल गाने का नहीं, ठीक है ओके, आपने बोला तो नहीं गाते हैं। आप सुनिए यहाँ पर

जी हाँ दोस्तों, तुमने पुकारा और हम चले आए। जी हाँ, एक कार्यक्रम के दौरान रणधीर कपूर से जब होस्ट ने कहा कि सर मेरा नाम जोकर मेरी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा मूवी है और वो मूवी जब भी आती है मैं उसे जरूर देखता हूँ। जी हाँ, तो सामने से रणधीर कपूर कहते हैं कि डेफिनेटली एकदम सही, आपको जान के शायद अच्छा लगेगा कि मेरा नाम जोकर इज ऑल्सो माई फेवरेट मूवी। उन्होंने एक और बात कही साथ में, कहते हैं कि मेरा नाम जोकर सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, आई एम वेरी श्योर कि राज कपूर की भी वो फेवरेट मूवी थी। जब होस्ट ने कहा कि सर कैसे बना लेते थे वैसी मूवी, मतलब मेरा नाम जोकर बहुत ही बड़े बजट की मूवी थी, बहुत बड़े क्रू के साथ बनाई गई थी, और ऐसे में जब पूछा गया होस्ट के द्वारा कि कैसे बना लेते थे, तो रणधीर कपूर सामने से कहते हैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर कि बहुत ही प्यार से और बहुत ही लगन से बनाई गई थी वो मूवी। जी हाँ, ऑफकोर्स जब वो नहीं चली तो मेरे पिताजी यानी कि राज कपूर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन मैं इतनी बात तो पक्की कह सकता हूँ कि वो मूवी उनकी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा थी। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि जो बच्चे थोड़े कम कामयाब होते हैं वो पेरेंट्स के बहुत ही ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, एंड इट वॉज लाइक दैट फॉर हिम। बट रणधीर कपूर ने आगे एक और चीज कही जो कि बहुत ही ज्यादा गजब की थी। उन्होंने कहा कि जो पिक्चर उस वक्त नहीं चली, जो पिक्चर उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई, आज वो पिक्चर सबसे बड़ा प्रॉफिट पॉइंट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। जी हाँ, मतलब राज कपूर फिल्म्स का सबसे बड़ा प्रॉफिट पॉइंट है मेरा नाम जोकर। मतलब अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है ना तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। वो एक और बात कहते हैं कि मैं इतना कह सकता हूं कि देयर विल नेवर बी अनदर राज कपूर, कोई ऐसा वक्त नहीं होगा फ्यूचर में जब कोई और एक और राज कपूर जैसा बंदा जो है वो इस दुनिया में पैदा हो सकता है, क्योंकि राज कपूर की जो लगन थी, मतलब उनका जो फिल्म मेकिंग स्किल्स थे, वो किसी को नहीं, मतलब किसी के पास नहीं आ सकते। उन्होंने एक और वर्ड्स कहा, उन्होंने एक और लाइन कही अपने पिता के बारे में कि राज कपूर वॉज अ वन मैन सर्कस। उन्होंने कहा कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे फिल्में पसंद हैं, और अगर किसी को फिल्में पसंद हैं तो वो कह सकते हैं कि राज कपूर जैसा बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, वो स्किल्स किसी के पास नहीं आ सकते, जैसी मूवीज उन्होंने बनाई, जैसी कहानियां उन्होंने सुनाई, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी एक्टर्स अपने रोल को इतने परफेक्शन से प्ले कर देते हैं कि लोग उसको इतना सीरियसली ले जाते हैं। अब रोल अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा तारीफ होती है, और रोल अगर नेगेटिव होता है तो बहुत सारी गालियां भी पड़ती हैं। पर एक्टर कामयाब होता है क्योंकि डायरेक्टर ने उसे जो कहा होता है करने के लिए, वो उसे इतनी ब्रिलियंस के साथ कर देता है कि उसके बाद लोग उनको सच में बुरा मानना शुरू कर देते हैं। सो ऐसा ही कुछ हुआ राज बब्बर के साथ, जब उनसे एक कार्यक्रम के दौरान ने पूछा कि राज साहब, जब इंसाफ का तराजू आपके घर वालों ने देखी थी तो उनका क्या रिएक्शन था। अब राज बब्बर उस किस्से को सुनाते हैं और बहुत ही फनी तरीके से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर ने उसका एक शो लगाया था और मैं अपनी फैमिली को लेकर उस मूवी को दिखाने लेकर गया था। बस फिर क्या था, वहां पर अब जब नॉर्थ के लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो वो बहुत ही अच्छे से तारीफ करते हैं, और बुरा लगता है तो वो बहुत जोर से गाली भी देते हैं। जी हाँ, यही कहना था राज बब्बर का। तो सामने से होस्ट पूछते हैं, अच्छा एग्जैक्टली हुआ क्या? तो राज बब्बर बड़े ही अच्छे से सुनाते हैं, कहते हैं जब तक जीनत अमान का सीन था वो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पद्मिनी गोलापुरी वाला सीन आया उसके बाद तो लोगों ने बहुत ही खतरनाक गालियां देनी शुरू की, जी हाँ। और वो सब सुनकर, वो देखकर मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और वो कहती हैं, बेटा पुत्र असी थोड़ी खा लवांगे पर तू एहो जेहे कम ना करी। जी हाँ, मतलब बेटे हम थोड़ा खाना खा लेंगे पर तू ऐसा काम मत करियो। जी हाँ, तो राज बब्बर कहते हैं जब मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि इसका मतलब यही था कि मैंने जो रोल प्ले किया है, जो डायरेक्टर ने मुझे करने के लिए कहा है, मैंने वो बहुत ही अच्छे से प्ले कर दिया है, बहुत ही अच्छे से कर दिया है और उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। तभी तो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं और तभी भी मेरी मदर भी इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई है। सो बस फिर क्या था, इसी के साथ यहाँ पर वो एक और चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि उस पिक्चर का बहुत बड़ा क्रेडिट जीनत अमान को जाता है, कहते हैं वो बहुत गिरी उसको उस रोल को प्ले करने के लिए, बट जितने अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूशन जीनत अमान ने दिया कोई और एक्ट्रेस नहीं दे सकती थी। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों ने ये मूवी देखी है, इंसाफ का तराजू? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना जो कि फरमाइशी गीत है, और ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर, माय फेवरेट लिसनर प्रेमांजी जी की तरफ से, और जो गाना उन्होंने किया है फरमाइश वो है सावन का महीना पवन करे सोर। हाँ ठीक है, मैं नहीं गा रही हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन मत लिया करो, ये तो गाने लग गई, फिर से गाने लग गई, ओ माय गॉड, रोको। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाती हूँ, खुद ही रुक जाती हूँ। सो ये गाना किया गया है प्रेमांजी की तरफ से फरमाइश, थैंक यू सो मच हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। और ये रहा आपका ये प्यारा सा गाना।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: लास्ट मिनट।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, मतलब छुट्टी मनाने का। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि वाह वाह, बड़ी खुश नजर आ रही हो। ऑफ कोर्स आज फ्राइडे है, खुश आज नहीं होंगी तो कब होंगी। सो आप लोगों को भी हैप्पी फ्राइडे वंस अगेन। मजे कीजिए, इस शाम का आनंद उठाइए, जितना उठा सकते हो उतना उठाइए। मतलब इस दुनिया में ना बहुत सारी बकैती चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना है, खुशियों को सेलिब्रेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, और हर एक दिन नई मेमोरीज को क्रिएट करना है। दैट्स व्हाट लाइफ is about, and yeah, that's it. Enjoy कीजिए, healthy रहिए, happy रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और अब ये last song आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा है, और इस गाने का नाम है अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। आई मीन आप लोग मुझे यही बोलना चाहते हो, तो मैंने खुद के लिए ही गाना प्ले कर लिया। मैं जा रही हूँ, कहीं तो जा रही हूँ। जी हाँ, bye bye, see you, टाटा, मिलते हैं अब आपसे कल टॉप 10 हॉट 10 में।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक Under the Stars, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। विक्टोरिया पार्क में ओलंपिक स्टेडियम का काम शुरू। ब्रिस्बेन में साल 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की तैयारी अब जमीन पर दिखने लगी है। शहर के मशहूर विक्टोरिया पार्क की घेराबंदी कर दी गई है और वहां 3.8 बिलियन डॉलर की लागत से बनने वाले भव्य ब्रिस्बेन स्टेडियम का शुरुआती काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। वहीं गूगल की ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को सलाह, एआई से डरे नहीं। गूगल ऑस्ट्रेलिया की मैनेजिंग डायरेक्टर मेलानी सिल्वा आज ब्रिस्बेन में हुए QUT बिजनेस लीडर्स फोरम में शामिल हुई। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई युवाओं और कर्मचारियों से कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से अपनी नौकरियों को लेकर बिल्कुल न डरे। इसी के साथ ब्रिस्बेन में डाटा सेंटर पर सीनेट की जांच शुरू। एआई और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ब्रिस्बेन और पूरे ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बन रहे बड़े बड़े डाटा सेंटर्स को लेकर संघीय सरकार ने एक सीनेट जांच शुरू की है। वहीं एआई और गूगल सर्च को लेकर नया खुलासा। ब्रिस्बेन की एक मशहूर डिजिटल फर्म BFJ डिजिटल ने आज सुबह उपभोक्ताओं के व्यवहार पर एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की। इस स्टडी में ये पाया गया कि लोग चैटिंग एआई और पारंपरिक गूगल सर्च का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। वहीं फिलीपींस स्वतंत्रता दिवस पर रोशनी से नहाएगा ब्रिस्बेन। आज शाम ब्रिस्बेन शहर का नजारा बेहद खूबसूरत होने वाला है। फिलीपींस के 128वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल आज रात सिटी हॉल को लाल, सफेद और नीले रंगों की खूबसूरत लाइटों से रोशन करेगी। वहीं ब्रिस्बेन में सप्ताह अंत पर सुहावने मौसम के आसार। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक ब्रिस्बेन में इस वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को मौसम बेहद सुहावना रहने वाला है। हल्की ठंडी हवाओं के साथ आसमान साफ रहेगा, जिससे शहरवासी अपने आउटडोर एक्टिविटीज और पिकनिक का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक रात भर हुई इस बारिश की वजह से कम तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरकर 22.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल। पिछले दो दिनों में भारी गिरावट देखने के बाद आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों ने बहुत जबरदस्त वापसी की है। 24 कैरेट सोना आज करीब 294 रुपए प्रति ग्राम महंगा होकर 14,858 रुपए पर पहुंच गया है। इसी के साथ शेयर बाजार में आई बड़ी बहार। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के शांत होने की खबरों का सीधा असर आज भारत के शेयर बाजार पर दिखा। सुबह बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 850 अंक से ज्यादा उछलकर 74,600 के पार निकल गया। इसी के साथ मुंबई में खुला नया हाईटेक डेटा सेंटर। जर्मनी की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी सैप ने आज आर्थिक राजधानी मुंबई में अपना एक बहुत बड़ा और नया डेटा सेंटर शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इस नए सेंटर की मदद से भारतीय कंपनियों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को दोबारा पूरी तरह से राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। वहीं ईंधन की सप्लाई को लेकर सरकार का बड़ा भरोसा। मिडल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच भारत सरकार ने आज देशवासियों को भरोसा दिया है कि देश में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टला। दुनिया के लिए आज की सबसे राहत भरी खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला बड़ा टकराव फिलहाल टल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान पर होने वाले नए हमलों और बमबारी को रोक दिया है। वहीं ओमान के पास मर्चेंट नेवी जहाज पर हमला। ओमान के तट के पास समुद्र में एक मालवाहक जहाज एमटी सटबेलो पर हुए हमले में विशाखापट्टनम के चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश समेत 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं समुद्री रास्ते की सुरक्षा में शामिल हो सकता है भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली G7 मीटिंग से पहले एक बड़ी खबर आई है। फ्रांस ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए बनने वाले इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं दलित कन्वर्ट्स पर सौंपी जाएगी बड़ी रिपोर्ट। भारत में दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के मामले पर बनी जस्टिस बालाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह तैयार हो गई है और इसे जल्द ही सरकार को सौंपा भी जाएगा। वहीं नाइजीरिया में वोट पलटने से बड़ा हादसा। जी हां, अफ्रीका के नाइजीरिया देश से एक बेहद दुखद खबर आ रही है, जहां एक नदी में क्षमता से ज्यादा लोगों से भरी नाव पलटने के कारण कम से कम 25 लोगों के डूबने से मौत हो गई। इसी के साथ यूरोप में भीषण गर्मी का अलर्ट। जून का महीना शुरू होते ही यूरोप के कई देशों में गर्मी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। स्पेन, इटली और फ्रांस के मौसम विभागों ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की उम्मीद है। वहीं अब चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार आगाज। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत कल रात मेक्सिको सिटी में एक बेहद शानदार और रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ हो गई। इसी के साथ मेक्सिको ने ओपनिंग मैच जीता। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में को होस्ट मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी शानदार शुरुआत की। इसी के साथ शूटिंग लेजेंड जसपाल राणा का निधन। भारतीय खेल जगत से आज सुबह एक बहुत ही दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज और मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। इसी के साथ जोस मरीनो फिर बने रियल मैड्रिड के मैनेजर। जी हां, फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने दुनिया के सबसे मशहूर और चर्चित कोच जोस मरीनो को एक बार फिर अपना नया मैनेजर नियुक्त कर दिया है। वहीं एशियन गेम्स के लिए मनु भाकर टीम में शामिल। भारतीय नेशनल राइफल एसोसिएशन ने आगामी एशियन गेम्स के लिए अपनी मजबूत टीम का ऐलान कर दिया है। स्टार शूटर मनु भाकर इस टीम की अगुवाई करेंगी। वहीं अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया। डम्बुला में खेली जा रही ट्राई सीरीज क्रिकेट के एक रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ए की टीम ने इंडिया ए को हरा दिया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
9: तूने ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
8: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
9: बिल्कुल, ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमसॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमसॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ऐ मेरी हमराज मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸਮੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। Remember, the number is 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Permanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो इम्तियाज अली दिया फिल्मा दे किरदार सिर्फ बारी सफर ही नहीं करते बल्कि एक गहरी अंदर तक दी गुजर जाते हुंदे ने। ओ किसे एक जगह या एक थां दी नहीं टिकण वाले हुंदे, एक बहुत ही वक्खरे किरदार हुंदे ने। ताई ताई इम्तियाज अली दियां फिल्मां नूं इन्ना ज्यादा पसंद किया जाता है। उन्हां दी यात्रा कित्थों शुरू होके कित्थों तक पहुंचती है अते इस दौरान ओ खुद नूं नवे सिरे तों लभदे है कि नहीं। कई बार यह सफर उन्हां नूं उन्हां दे पुराने ठिकाणे तक भी लै जाता है जिथों अपने अतीत तों रूबरू हुंदे ने। ते हुण जदों इह फिल्मां दी गल चल रही हैगी है मतलब के इम्तियाज अली दिया तां हुण फिर रिलीज होई मैं वापिस आऊंगा नूं किवें किवें किवें भुल सकदे आं असीं। बिल्कुल सही, इम्तियाज अली दी फिल्म मैं वापिस आऊंगा थानू याद दवांदी है उस पुराने प्यार दी जिसकी तड़प उम्र भर रहिंदी है। जमीना बन जांदियां ने पर दिल कदे नहीं बनते। फिल्म दी जे गल करिए तां फिल्म विच एहसास है, इश्क है ते बिछड़न दा गम है, एक्टिंग दे रंग है कि नहीं, पर किते किते कहानी ने कैमरे दे अगे दम भी तोड़िया है। तां मैं थानू सोचा कि रिव्यू देना इस फिल्म दा, है ना? तां चलो फिर

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करें प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज
4: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ। वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria.
5: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery pass वाले shop से ले सकते हैं ना?
6: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour, और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's Indian and Island Food, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतला तो कमाई करो, तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
2: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Areia, suco, suco!
1: Ai, ai, ai, करूं मैं क्या, suco, suco! Ai, ai.

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
6: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, The Grand Multicultural Mela Carnival 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव Under the Stars, Tarun Raniga, Ricky from Sydney और Diman Roy लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार Bollywood Musical Concert, full of energy and classical hits. And wait, रात को आसमान चमकेगा एक unforgettable fireworks display. सबसे best part, entry is absolutely free, including parking. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, Saturday, June 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 04026510455 पर या फरजाना को 04014282488 पर। Log on to brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
5: आज

ना बदला मैं, ना बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है। Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience। और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है। And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Maria, suco, suco!
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूँ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट प्रसिद्ध लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई हैं। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते माँ इन सब की बातें मत सुनना, सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया

वास्तविकता क्या है? कन्हैया ने माखन खाया। इतना ही नहीं, मां ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो बस कन्हैया ने सोच लिया आप तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया कि हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं।

विशेषता है। रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि यह भोर है और यह

नहीं चला यह तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां भला सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं? कहां तुम टांग के रखती हो माखन?

मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया, कहने लगे

नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए, स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।

ज्यादा ही कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया।

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है, अभी तक मां कह रही है

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

तरह वही है जो होता रहता है, भीगा भीगा सुबह है, भीगा भीगा मौसम ज्यादातर रहेगा। और साउथ ईस्ट क्वींसलैंड का जो मौसम का खबर है कुछ इस प्रकार है, जो मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने हमें प्रदान किए हैं उसके अनुसार ज्यादातर धूप निकलेगी, लेकिन समय समय पर कुछ हल्की बारिश भी कई केंद्रों पर होगी। तो चलें साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के लिए शुरू करते हैं। आज सूर्य उदय हुआ है 6:35 और अस्त होगा 5 बजे। 22 रहेगा दिन में और रात्रि को 15 है ब्रिस्बेन का तापमान है। और इप्सविच में इसी प्रकार मौसम होने के साथ साथ 22 रहेगा दिन में, रात्रि को 12, हवा का रफ्तार 14। और सनशाइन कोस्ट आपको ले चलते हैं जहां हल्की बारिश होती रहेगी, 22 दिन में रात्रि को 17, हवा का रफ्तार 23। गोल्ड कोस्ट में ऐसा ही मौसम रहेगा, 22 दिन में रात्रि को 15, हवा का रफ्तार 16। ओकलैंड न्यूजीलैंड में धूप निकलेगी और निकली हुई है, यहां पर 7:30 बजे सूर्य उदय हुआ है, 5:12 पर सूर्यास्त होगा, 16 दिन में रात्रि को 8, हवा की रफ्तार 5। वेलिंगटन में ज्यादातर धूप निकलेगी और 13 दिन में रात्रि को 9, हवा की रफ्तार 26। और नेडी में लंबासा में बादल घिरे रहेंगे, नेडी में 26 दिन में रात्रि को 22, हवा की रफ्तार 13। 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:40 पर सूर्यास्त होगा। लंबासा में ऐसा ही मौसम होने के साथ साथ 27 दिन में रात्रि को 22, हवा की रफ्तार 24। सुबह में हल्की बारिश हो रही है, 25 दिन में रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 29। मुंबई ले चलते ज्यादातर धूप निकलेगी, 33 दिन में रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 23। और अमृतसर में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ गर्मी ज्यादा रहेगी, 36 मैक्सिमम 27 मिनिमम 11 विंड स्पीड। और नई दिल्ली में बहुत धूप निकलेगी, गर्मी बहुत रहेगी, 36 यहाँ भी, और रात को 27, कोई राहत नहीं है भाई, और 8, हवा का रफ्तार रहेगा। 5:22 पर सूर्य उदय होगा, 7:20 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम की खबर। मैं परमानंद आप सबका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। और लोग जगह जगह पर उठे हुए हैं, और अमला जी आपको भी गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का, धूप निकली हुई है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी वहाँ अच्छी तरह होंगे। गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ साथ कई और लोग जुड़े हैं हमारे फोन के द्वारा और ऐप के द्वारा। अभी मित्रों हमारा जो ऐप है ब्रिस्बानी ऐप, आप वेबसाइट पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिस्बानी 1701 AM आप टाइप कर दें, या सीधे ब्रिस्बानी सिर्फ 1701 AM रेडियो कर दें और गूगल पे जाकर लाइव आप सुनना शुरू कर देंगे। तो जो लोग उठ गए हैं भाई, रास्ते पर हैं, गाड़ी वगैरह में सफर कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए चलें आज का जो शुरुआत है। उससे पहले एक बात और बतला दूं, एक भेंटवार्ता मैं लेकर आऊंगा 7:45 यानी 7:45 AM रॉबर्ट राज जी के साथ होगा। यहाँ पर एक मल्टी कल्चरल मेला फेस्टिवल होने जा रहा है आज सुबह 10 बजे से, इसके विषय में कुछ जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। और अब जो समय आया, एक बहुत ही खूबसूरत गीत सोनू निगम जी द्वारा अदा किया गया है, और इस गीत को कई तरह से हमें सोचा लोगों को सुना दूं। क्यों सुना दूं? क्या है, जब हम खाट पे जाते हैं कभी कभी ना, और नींद नहीं आती है, सीलिंग को देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, और फिर सोचते हैं भाई सुबह कब हो जाए, कब हम उनसे संपर्क करें, कब बातें करें। लेकिन ऐसा ही गाना है कुछ, सोनू निगम जी सुनाएंगे, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो चलें आनंद ले इस गीत का, फिर हम आगे बढ़ते हैं।

तो मित्रों, आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज आप जानते हैं कि शनिवार 13 तारीख जून सन 2026 है। ब्रिस्बेन का मौसम हमेशा की

जी मित्रों, ये खूबसूरत गीत के जो शब्द थे फैज़ अनवर जी के थे, और जो फीमेल वॉइस आप सुन रहे थे कोई और नहीं मगर अनुराधा पोटवाल जी थी। सुबह का बेला है, 21 मिनट रह गए हैं इस समय 7 बजने में, और परमानंद का साथ है संगीत सरगम प्रोग्राम में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खाट पर लेटे हुए हैं, थोड़ा भीगा मौसम है, जी करता होगा उठ जाएं, फिर जी करता होगा भाई थोड़ा उधर लेटे रहें, तो जो भी है जैसे भी है, अगर लेटना है तो लेटे रहो और उठना है तो उठ जाओ, क्योंकि हम आ गए हैं महफिल में। और अगला जो गीत है बहुत प्यारा है, पाकिस्तानी कलाकार है जावेद अहमद साहब, ये अदा कर रहे हैं इस गीत को, और बिन तेरे क्या है जीना। सही बात है ना, कभी कभी हम प्यार में जब होते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं तो कुछ ऐसे बातें याद आती हैं।

0: जी हाँ मित्रों, बहुत कमाल का गीत था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं हूँ परमानंद, आप सुन रहे हैं संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को। चलें आगे, हम विज्ञापन की तरफ नजर उठाकर चलते हैं और दो विज्ञापन बजाते हैं।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: जी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलिए एक डिवट सुनते हैं और इस बार डिवट को अदा कर रहे हैं कोई और नहीं, फरहीन सईद जी और श्रेया घोषाल जी। अब इतने होते हुए जब कोई के साथ हम बैठे हुए हैं, बहुत प्यारा सा समय बीत रहा है, तो हम बोलने लगते हैं भाई जो ये गीत कह रहा है।

0: जी मित्रों, हाफ गर्लफ्रेंड से लिया गया गीत आप सुन रहे थे। और 10 मिनट रह गए हैं इस समय 7 बजने में, और दो और गीतों का रहेगा ये सेगमेंट का, तो चलो दो खबर सुनते हैं।
1: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: तो जी हाँ, ये विज्ञापन था रिसाइकल बोटल्स का जो आप सुन रहे थे। और इसी के साथ ही रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में 8 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। चले आगे बढ़ते हुए अपना बना ले अरिजीत सिंह और साथियों का गाया हुआ खूबसूरत सा गीत।

मित्र, बहुत प्यारा संगीत था। कैसे समाप्त हो गया इतना जल्दी समझ भी नहीं आया। और इसी के साथ ही लगभग 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट और बचे हैं। एक और गीत बजा देते हैं आपके लिए। और ये गाना बहुत बार आप सुने हैं और जब भी सुनते हैं तो दिल में एक अलग सा उमंग जाग उठता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अरिजीत सिंह साहब आ रहे हैं खूबसूरत गीत के साथ।

0: जी मित्रों, गीत समाप्त हो गया। समाप्त होते होते भाई घड़ी तक देख रहा हूँ तो 2 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। एक बार फिर मौसम पर नजर डालते हैं आज के साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के मौसम के खबर के अनुसार। कहीं भीगा भीगा सा दिन रहेगा आज। कुछ 50% कह रहे हैं कि ब्रिस्बेन में बारिश होने की संभावना है। और आगे बढ़ते हैं, जबकि दिन बढ़ चुका है, सुबह हो चुकी है और 22 हैं इप्सविच और ब्रिस्बेन में, और 22 ही रहेंगे सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट में। रात्रि के समय लेकर 12 से 17 डिग्री तापमान इन साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में रहेगा, लेकिन कोई राहत खास नहीं है, बारिश होगी। और शाम तक देखते हैं कुछ हल्का हो जाए मौसम तो बाहर फिर घूमने फिरने का और जो प्रोग्राम्स लोग रचे हैं वो पूरा हो। याद रहे 7:45 भेंटवार्ता रॉबर्ट राज जी के साथ मैं लेकर आऊँगा, जो मेला आज लगने जा रहा है 10 बजे से, तो आप जरूर साथ देना और जानकारी हमें प्रदान करेंगे। और अब पुराने गीतों का समय आ रहा है दोस्तों। पुराने गीतों में बहुत सारे गाने हैं जो हम बजाना चाहते हैं और जब शुरू करते हैं तो जी चाहता है कि एक के बाद एक बजाते चले जाएं, लेकिन समय अभाव के कारण कभी कभी हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उतना वक्त नहीं होता। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 2 विज्ञापन ले लेते हैं। अभी 7 तो बजा है, लेकिन 7:01 बचे हैं, बज गया 7। चलो 2 खबर लेते हैं।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर जा रही हो।
2: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, The Grand Multicultural Mela Carnival 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। Experience the magic of unity, culture and pure celebration। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, करुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
0: जी मित्रों, ये आज ही है मेला, आज ही है 13 तारीख, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आएंगे। प्रवेश मुफ्त है और पार्किंग का भी बोलते हैं कोई चिंता नहीं है, तो बस परिवार के साथ निकल आए।
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
0: जी मित्रों, एक बार फिर आपका तहे दिल से मैं परमानंद स्वागत कर रहा हूँ। शनिवार के सुबह है, 13 तारीख जून है, मौसम भीगा भीगा है साउथ ईस्ट क्वींसलैंड का, और इसी में हम सुबह तड़के उठकर आपके सेवा में आ चुके हैं। और जो लोग हमारा प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, गाड़ी में सुन रहे हैं और कहीं और हैं, कोई और माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शनिवार है, मैं जानता हूँ कुछ लोग काम पर जाएंगे, कुछ लोग अपना रोजगार चलाएंगे और कुछ लोग घर पर रहेंगे, कुछ लोग तैयारियां कर रहे होंगे कहीं जाने का, शादी भी होता है, पार्टीज भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं और मेला भी कहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर जाओगे। जहाँ भी जाना खुशी खुशी जाना। कुछ लोग अपने बिल्डिंग वगैरह में कुछ काम भी करेंगे, क्योंकि भीगा मौसम, अंदर का काम आप कर सकेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिल्म चिराग आपको मालूम होगा, पुराना पिक्चर है जिसमें सुनील दत्त साहब, आशा पारेख जी बहुत ही बेहतरीन भूमिका मदन मोहन जी के संगीत पर किए हैं। उनका एक बड़ा ही लोकप्रिय गीत है जो रफ़ी जी की आवाज़ में हम आपके सेवा में लेकर आएंगे। और आँखें बहुत कुछ कह देती हैं, और चलो रफ़ी साहब क्या कहते हैं और पर्दे पर सुनील साहब क्या आशा जी से कहते हैं।

0: जी मित्रों, रफी जी की आवाज और फिर वो सुरीली आवाज लता जी का अंत में आकर सब कुछ पूरा कर दिया। कभी कभी हम सोचते रहते हैं ना कि इनमें थोड़ा सा कमी है, क्यों नहीं दूसरी आवाज भी आ जाए, तो ऐसे ही होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। जब साथ में बीते फिर कभी कभी क्या, अगर जैसे हम शहर में रहते हैं ना, तो लोगों की मकान बहुत पास ही पास है, बहुत फासला नहीं है, एक मकान दूसरे मकान खिड़कियों से हम झांक सकते हैं, लेकिन बुरा होता चाहिए नहीं। लेकिन किशोरदा भाई अपने अंदाज में कुछ कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं फिल्म पड़ोसन में, और ये फिल्म के जो गीत है ना, इस पर कई कहानियां लिखी गई हैं। एक तो बोल रहे थे कि जब ये बंदा आरडी बर्मन साहब कुछ धुन बनाए और धुन के कुछ धुन बनाकर तो लिखे, और फिर महमूद साहब आए स्टूडियो, महमूद जी की भी भूमिका इसमें है, किशोरदा भी हैं और सुनील दत्त साहब भी हैं, कई कलाकार हैं यहाँ पर। तो फिर उन्होंने, महमूद ने कहा यार ये गाना चलेगा नहीं, बेकार गाना है, फिल्म को फीका कर देगा। और फिर उन्होंने मोड़ कर वो कागज़ जो है रवीश बिन में फेंक दिया। फिर किशोर कुमार जी को आना था, तो किशोर जी आए तो उन्होंने देखा कि बहुत निराश होकर सर झुकाए बैठे हैं आर डी बर्मन साहब, तो किशोर कुमार से कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और महमूद साहब बैठे हैं। तो किशोर जी देखें कि भाई बास्केट, रमेश बास्केट में क्या पड़ा, कागज पड़ा है। उन्होंने कागज़ उठाया, कागज़ उठाकर उसका निरीक्षण किया। पढ़ने के बाद धुन को उन्होंने कहा कि कमाल का गीत है यार, कमाल का गीत है, तो बहुत बढ़िया है, प्यारा सा है, अच्छा लगेगा गाने में। तब फिर ये सहमति हुई कि चलो सुन लेते हैं। तो यही गाना था, सुनाते हैं आपको।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: रहता है।
1: ये मित्रों, मेरे सामने वाले खिड़की पे एक चांद सा टुकड़ा रहता है। 13 मिनट हुए हैं 7:01। एक और गीत, उसके बाद हम राव जी को लेकर आएंगे, मगर उससे पहले दो विज्ञापन, एक गीत, फिर राव जी। तो चलो विज्ञापन के साथ आगे बढ़ते हैं।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: 14 मिनट हुए हैं 7:00, और अब जो गीत बजाने जा रहा हूँ, बहुत ही लोकप्रिय गीत है। लता जी अदा कर रही हैं इसे, पर्दे पर सायरा बानू जी हैं और शंकर जयकिशन जी का संगीत है। गीत के रचयिता हजरत जयपुरी साहब हैं। अब बोलते हैं भाई, खिड़की में देखते देखते कोई अगर आपका घर में दाखिला कर ले तो कितना बुरा बात बगैर आपके जाने। फिर क्या मस्ती आप कर रहे हैं तो वो देख कर नज़ारा कुछ और होता है।

0: जी मित्रों, फिल्म झुक गए आसमान का गीत आप सुन रहे थे। उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। और थोड़ा देर में राव जी को लेकर आएंगे, तो चलें दो खबर और सुनते हैं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

और इस समय 21 मिनट हुए हैं 7 बजकर। संगीत सरगम प्रोग्राम के अंतर्गत आप पुराने गीतों को सुन रहे हैं। अगला पुराना गीत जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और शमी कपूर साहब के लिए है, और इसे अदा कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी, साथ दे रहे हैं आशा भोसले जी। सुनते हैं।

0: नियमित रोडीवट सुन रहे थे दीवाना हुआ बादल। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान आप सुन रहे हैं और इस समय लगभग 27 मिनट हुए हैं, अब 28 होने जा रहे हैं 7 बजकर, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका साथ और मेरा साथ पसंद आ रहा हम दोनों को, और इसीलिए हम कुछ चुने हुए मज़ेदार गीतों को आपके सेवा में लेकर आए हैं। और अगला जो गीत है बहुत प्यारा सा गीत रहेगा, और एक गीत के बाद हम राव जी को लेकर आएंगे, तो देखते हैं क्या है बाकी। और दोस्तों, रेडियो ब्रिजबानी का जो प्रसारण है 1701 AM के माध्यम से 7 in My Rocks ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से हम कर रहे हैं, जहां पर शनिवार का सुबह है 7:30 बजने वाले हैं। और समय हुआ जन्मदिन के खबरों का, जिनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह हम आपको याद कर रहे हैं। बहुत सारे शुभकामनाएं रेडियो ब्रिजबानी के माध्यम से आपको भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ जिसकी शादी की सालगिरह, आपकी जोड़ी सदा मुबारक साथ रहे, और जो भी करें सोच समझ कर प्यार से करें। कहने का मतलब है कि जोड़ी सलामत रहेगी तो बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ जिनका जन्मदिन आने वाला है उनको भी हम याद कर रहे हैं। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। गंगा भाई, राम राम, आपको भी एक गीत में शामिल कर रहा हूँ। सारे गमा पा गीत के बोल हैं और इसे किशोर कुमार जी और लता जी अदा कर रही हैं। फिल्म का नाम था अभिनेत्री। चलें पर्दे पर हेमा मालिनी जी, शशि कपूर जी, वन ऑफ द टॉप हिट सॉन्ग्स।
1: हंसो मत, बोलो

0: जयमित्रो सारेगामा पापा हम गीत सुन रहे थे और इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं राव जी। राव जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो ब्रिजबानी पर।
1: नमस्कार नमस्कार परमानंद जी,
0: बेगा
1: कुछ देर हो गया मेरे तरफ।
0: हाँ, क्या करेंगे, कभी हो जाता है ना।
1: हाँ जी
0: बोलिए।
1: आज आज के सारे सुविधा साधन प्रकृति के विरुद्ध है। हमारे लिए धूप और हवा आवश्यक है, पर वह आज के मकानों में सुलभ नहीं है। धूप तो मकानों के घुसती ही नहीं है, हवा भी कृत्रिम साधनों से लाई जाती है। पंखा चलाते हैं ना
0: जी,
1: इससे शरीर ही नहीं बिगड़ा है, आदमी की मनोदशा भी बिगड़ी है, मूड भी बिगड़ने लगा है। आज का समूचा परिवेश मनोदशा को उत्तेजित करने वाला है, बिगाड़ने वाला है। आदमी की सहन शक्ति कम हुई है और इसका कारण है सुविधावादी मनोवृत्ति। इस वृत्ति ने सहन करने की प्राकृतिक क्षमताओं को नष्ट कर डाला है। सुविधाओं को भोगते भोगते आदमी उनके वशवर्ती हो गया है, सहन शक्ति चूक गई है। केवल शारीरिक सहन शक्ति ही नहीं, आदमी का मन भी कमजोर हो गया है। कठोर जीवन और श्रम का जीवन जीना अच्छा होता है, पर उसे भुला दिया गया है। इन सुविधाओं ने आदमी आदमी में स्वार्थ और क्रूरता का भाव भी उजागर किया है। आदमी सारी सुविधाओं स्वयं भोगना चाहता है, दूसरों के प्रति उसका वैसा भाव नहीं है। एक समय की बात है, महात्मा गांधी इलाहाबाद गए, आनंद भवन में ठहरे, प्रातःकाल हाथ मुंह धो रहे थे। पास में जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, बातचीत चल रही थी। गांधी के लोटे का पानी समाप्त हो गया। वे बोले, वो क्या बात है, बात ही बात में पानी पूरा हो गया, अभी कुल्ला करना शेष बाकी है। नेहरू ने कहा, बापू क्या कह रहे हैं, पानी पूरा हो गया तो आप जितना चाहेंगे उतना और आ जाएगा। यह गंगा जमुना का नगर है, यहाँ पानी की कमी कैसी है। बापू बोले, जवाहरलाल तुम ठीक कहते हो कि यह नगर गंगा जमुना का है, किंतु इन पर अकेले बापू का अधिकार नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का इन पर अधिकार है। मैं फिजूल पानी खर्च करूं या अनुचित है। आज भी हमारी सनातन लोग बहुत कोशिश करके पानी की कमी करते हैं और पानी को सोच समझ करके, खासकर नारी विभाग में ये पाया जाता है, वे किचन का काम करते हैं और पानी अनायास नहीं खर्च करते हैं। तो ये थी छोटी सी शिक्षाप्रद बातें परमानंद जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राव जी आने के लिए और इन बातों को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और फिर हम मिलते हैं शनिवार को। नमस्कार जी। अच्छा जी। तो मित्रों ये थे राव जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ, मगर उससे पहले विज्ञापन बजाता हूं दो, फिर 7:45 हम लेकर आएंगे रॉबर्ट राज जी को। तो चलो सुनते हैं दो खबर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: जी मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, बहुत ही लोकप्रिय गीत है अभिजीत का अदा किया गया, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, फिल्म हासिल का लोकप्रिय गीत।

0: तो मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और अभी इस गीत को आप सुन रहे थे जो फिल्म हासिल का था। और खुशी की बात है, हमारे साथ जुड़ गए हैं रॉबर्ट राज जी। और आज आप जानते हैं कि ग्रैंड मल्टी कल्चरल मेला कार्निवल 2026 रॉबर्ट राज जी अपने टीम के साथ तैयार किए हैं और जो होने को है इसके विषय में हम कुछ बातें करेंगे। तो रॉबर्ट जी, रेडियो ब्रिजबानी पर आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार फरमा भाई, नमस्कार।
0: और रॉबर्ट जी, ग्रैंड मल्टी कल्चरल मेला कार्निवल आप क्यों आयोजित किए हैं?
1: फरमा भाई, ये हमारा इवेंट जो हो रहा है मल्टी कल्चरल मेला कार्निवल, ये शुरू हुआ था से कुछ फाइव ईयर्स पहले। आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी बता दूं हमारा ये इसका फाउंडेशन क्या है
0: जी।
1: जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो सब कुछ बंद हो गया था ना, आपको याद होगा
0: जी।
1: सब एक्टिविटीज, फेस्टिवल वगैरह सब बंद हो गया था। तो जब 2021 में गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा शुरू किया खोलने को, तो हमने उस टाइम डिसाइड किया कि हम एक फेस्टिवल करेंगे। तो हमारा ये फेस्टिवल पहले उसका नाम था ईद मेला कार्निवल।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: ये फेस्टिवल ये फेस्ट हमने किया था ड्यूरेक में, जो स्टूडेंट इस्लामिक इंटरनेशनल कॉलेज है ब्लंडर रोड में, वहां पर हमने किया था 2021 में। बिकॉज वो पहला हमारा फिनलैंड का पहला फेस्टिवल था आफ्टर कोविड लॉकडाउन, बहुत भारी तादाद में पब्लिक आए, हमने तो कोप नहीं कर पाया था यू नो कि इतना जस्टिक क्राउड आए। तो फिर वो उस साल से 2021 से पीपल एक्सपेक्ट करने लगा कि हम हर साल एक ईद मेला करेंगे। तो उसके बाद हमने एवरी ईयर 2022 से लेकर 2025 तक ईद मेला कार्निवल किया, कभी माउंट ग्रेवर शोग्राउंड में, कभी रोकली में। तो लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया कि हमको खाली ईद मेला कार्निवल नहीं करना है, सब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। तो हमने इसका नाम चेंज कर मल्टी कल्चरल मेला कर दिया। तो इसी तरह हमारा ये संस्था शुरू हुआ है और हम ये पांच साल से ये लगातार एवरी ईयर कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो रॉबर्ट जी, इसको आयोजित करने के खास महत्व या कारण क्या है?
1: अच्छा, तो आपको जिससे मैंने बताया था ना कि जब लॉकडाउन था ना, तो जब शुरू हुआ 2021 में, गवर्नमेंट ने हमको अप्रोच किया एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि कम्युनिटी के लिए कुछ करे ना
0: जी।
1: तो हमको कुछ गवर्नमेंट ने ग्रांट भी दिया कि कम्युनिटी को साथ में लाए कुछ सेलिब्रेशन करें ना, तो हमको कुछ ग्रांट दिया कि तुम इस ग्रांट से कुछ करो ना पब्लिक के लिए, गेट द पीपल आउट ऑफ द हाउस, कुछ यू नो एक्टिविटीज करो जो सब एज ग्रुप के लिए इन्वॉल्व हो। तो हमने ये फ्रेंडशिप के लिए और डाइवर्सिटी के लिए और कम्युनिटी स्पिरिट के लिए हमने शुरू किया था और उसी प्रिंसिपल पे ये अभी तक चल रहा है। हमारा यही मकसद है कि हम लोगों को जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है, सबको साथ लाए के एक दिन का एंजॉयमेंट कराए ना, फन, फूड, म्यूजिक एंड फ्रेंडशिप, यू नो ये सब कर रहे हैं ना। ये जमाना में, आजकल के जमाने में पीपल बहुत बिजी होते हैं ना, और अगर कुछ नहीं होता है तो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर ये हमारा मेला स्टाइल जो चीज होता है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि नेबर्स मीट नेबर्स, यू नो फैमिली स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड कम्युनिटीज कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर ना, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के साथ खेल सके, खा सके, पी सके, यू नो एंजॉय कर सके। तो यही हमारा मैसेज है, डिफरेंट कल्चर्स, वन कम्युनिटी, वन फैमिली।
0: वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं रॉबर्ट जी, एक कार्निवल कहाँ, कब और कितने बजे से शुरू होगा?
1: अच्छा, इस बार हमारा मोस्टली कार्निवल होता था रोकली शो ग्राउंड में, कभी माउंट ग्रेवर शो ग्राउंड में। इस साल हमने कोशिश किया है कि हम कम्युनिटी के पास में आए, अंदर आ जाए ना। तो हमने करबी में एक पार्क है सबोदा पार्क नाम से, वो बिनली रोड और स्टीला ड्राइव का कोना पर है और वो काफी बड़ा पार्क है और इसके आस पास बहुत भारी पीपल रह रहे हैं। तो हमने ये करबी में साल किए करने की योजना लिए है।
0: अच्छा, तो
1: ये हमारा इवेंट शुरू होगा करबी में 10 बजे शुरू होगा और 8 बजे रात तक चलेगा।
0: अच्छा, तो जो लोग सुन रहे हैं उनको बतला दें कि ये जो पार्क है उसका पता है 1498 बिनली रोड करबी। जो लोग अपने नेविगेशन से आएंगे ना गाड़ी में, तो 1498 बिनली रोड करबी है, आसान से आपको जगह मिल जाएगा। और रॉबर्ट, आगे बढ़ते हुए एक और पूछना कि ये जो आप आयोजित किए इतना बड़ा मेला, इसका एंट्री फीस वगैरह है जो लोग आना चाहेंगे?
1: नहीं, हमारा यहाँ पर एंट्री कंप्लीटली फ्री है, आप फ्री में आ सकते हैं और पार्किंग भी फ्री में कर सकते हैं, और स्ट्रीट पार्किंग भी काफी है, तो बढ़िया बड़े आसान से आप आ सकते हैं। हमारा पार्क के ऑपोजिट में एक स्कूल भी है, वहां पर अबाउट 100 पार्किंग है, तो आपको पार्किंग आसान से मिल जाएगा। फिर स्ट्रीट पार्किंग भी है, हमारा पार्क के अंदर वो सिर्फ अबाउट 60 पार्किंग है, तो बहुत सारे पार्किंग मिल जाएंगे जगह जगह पर आपको।
0: और आपसे बातें हो रही,
1: कंप्लीटली फ्री है।
0: ओह वेरी गुड। अच्छा, आपसे बातें हो रही थी, आप कह रहे थे कि भाई धूप निकला हुआ या कि सनी हो गया वेदर, तो कैसा है प्रबंध?
1: माशाल्लाह, मैं कल दिन भर घाम था, सन निकला था, तो ग्राम काफी ड्राई हो गया था
0: जी,
1: काफी हमने सेटअप कर दिया था, लेकिन फिर सांझ को बारिश आने लगा, तो धीमे धीमे आए थे रात भर, बट थोड़ा ग्राम अभी वेट है, लेकिन घाम से धूप निकल गया है, और हम विश करते हैं कि 10 o'clock ले काफी ड्राई हो जाएगा, और सांझ ले तो पूरा ग्राउंड पूरा ड्राई हो जाएगा नो।
0: अच्छा, तो ये थोड़ा सा हमें प्रोग्राम का जो रूपरेखा या क्या आपने आयोजित किए इसके बारे में जिक्र करेंगे रॉबर्ट जी?
1: अच्छा, ये जो हमारा मेला है ना
0: जी,
1: इसमें क्या है खास कि हमने इंटरनेशनल क्विजीन देना, मतलब जगह दुनिया का सब देश का क्विजीन या लाइक मतलब फूड वगैरह पीपल का रखे है ना, हमारे पास यहाँ पर 25 फूड स्टॉल्स एंड फूड ट्रक्स है, तो ये अलग अलग देश का है, तो अगर यहाँ आएंगे आप तो आपको मौका मिलेगा कि आप अलग अलग देश का पकवान चख सकते हैं ना, खा सकते हैं, और हमारा देश फिजी का भी होगा और बहुत सारे देश का होंगे ना, और यहाँ पर बच्चों के लिए राइड्स वगैरह होगा, जंपिंग कैसल होगा और अदर एक्टिविटीज होगा, लेकिन खास बात हमारा इवेंट का ये है कि हम जो पीपल आ रहे हैं उसको सबका फ्री एंट्री है, लेकिन हम हर एक घंटा पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 o'clock हम एवरी आवर पर हम एक रेफर ड्रॉ करेंगे, तो उसमें बहुत सारे प्राइजेस हैं, तो एवरी आवर 1 o'clock 2 o'clock से लेकर सिर्फ 8 बजे तक हम एवरी आवर पर एक रेफर ड्रॉ करेंगे, वो रेफर का दाम खाली $3 है, आप कर सकते हैं, तो आपको फिर 8 चांसेस मिलेगा जीतने को, तो एवरी आवर 1 o'clock एक ड्रॉ होगा, जो फिर जितना बचेगा फिर 2 o'clock सब वही ड्रॉ होगा, फिर ये चलते रहेगा 8 बजे तक, तो इसमें आपको बहुत भारी चांसेस है जीतने का। और एक और हमारा खासियत है इस इवेंट में कि हम जैसे हमारा मल्टीकल्चरल इवेंट है ना, तो हमने अलग अलग कल्चरल ग्रुप से परफॉर्मेंस का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो लगभग 3-4 ग्रुप्स आ रहे हैं, लाइक इंडोनेशियन ग्रुप हो गया, फिलिपिनो ग्रुप हो गया, अफगानी ग्रुप हो गया, या कर अपन कल्चरल डांस स्टेज पर दिखाएंगे। और आपको तो असली बात तो हमने बताना भूल गया कि रात को 6 o'clock से हमारा इंडियंस का लाइव बॉलीवुड शो होगा, यहाँ पर 2-3 लोकल आर्टिस्ट डिमंड रॉय, तरुण रानिका और रिकी नायडू जो सिडनी से है, ये सब 6 बजे से बॉलीवुड म्यूजिक गाना गाएंगे, जस्ती करके मोहम्मद रफी का सॉन्ग्स और किशोर कुमार का सॉन्ग्स, तो आप जरूर आकर ये 1.5 hour फ्री बॉलीवुड शो देख सकते हैं।
0: तो रॉबर्ट जी, और अंत में आप और कुछ कहना चाहेंगे?
1: अच्छा, तो परमा भाई, मेरा यही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप क्यों ये इवेंट में आए, ये इवेंट में आकर आप यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ना, आपको दोस्त मिलेंगे, नेबर्स मिलेंगे, और आप कर एक्सपीरियंस कर सकते हैं दुनिया का अलग अलग कल्चर्स ना, वो जो हमारा ब्रिस्बेन में है ना
0: जी।
1: और आप आकर यहाँ पर लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप सेफ और वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पर आकर आप नए लोग से मिल सकते हैं ना, और अपना कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आप ना, पीपल कम फॉर द फूड एंड एंटरटेनमेंट बट दे लिव विद फ्रेंडशिप एंड मेमोरीज।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो रॉबर्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके समय के लिए, आप आए यहाँ पर, और लोगों से बतलाना चाहता हूँ कि जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है सुबह 10 से रात को 8 बजे तक होगा, और 1498 बिनली रोड करबी में है, और जानकारी के लिए आप फरजाना जी को 0401-428-248 पर, मेस जी को 0416-522-125 पर, फिना जी को 0412-411-055, और रॉबर्ट राज जी से भी हम बातें कर रहे थे 0402-651-05। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
1: मैं दो मिनट में कुछ कह दूं
0: जी,
1: दो मिनट से हम शायरी के फॉर्म में हैं।
0: अच्छा,
1: घर में बैठ कर, हाँ, घर में बैठ कर क्या करोगे यार, मेला में आओ करो थोड़ा प्यार, बिरयानी की खुशबू कबाब का स्वाद, बच्चों के चेहरे पे खुशी बेहिसाब, झूले भी है और है प्यारी सवारी, हर तरफ मिलेगी मस्ती की सवारी, दिमन रोए गाएगा सुरों का जादू, तरुण रानिया करेगा दिल को काबू, रिक्की भी सुनाएंगे पुराने अफसाने, मोहम्मद रफीक और किशोर कुमार की तराने, जो ना आए वो पछताए का, क्योंकि मेला में मिलेगा खुशी का माहौल, बीबी खुश बच्चे खुश सास ससुर भी खुश, जो आएंगे और जो सिंगल है वो भी दोस्त बनाएंगे, ना कोई टेंशन ना कोई झंझट ना झमेला, सब मिलकर मनाएंगे मल्टीकल्चरल मेला, आज ही आए दोस्तों को भी साथ लाए, खुशी के रंग से जिंदगी को सजाएं, बस यही था।
0: अच्छा, तो रॉबर्ट जी नमस्कार आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ अल्लाह ताला से कि भाई मौसम साफ रहे, और ये मेला जो आप लेकर आए ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला अपने साथियों के साथ, ये बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली लवली एंजॉयबल इवनिंग। हाँ, धन्यवाद जी। तो मित्रों, ये थे रॉबर्ट राज जी, और आप जाएं बड़े संख्या में और वहां पर जाकर ये प्रोग्राम को अटेंड करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक गीत, फिर रानी क्रिस्टन का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया।

0: ये मित्र वार्ड बज चुका है और इस गीत को हम अभी शुरू करेंगे फिर जहाँ से छोड़े हैं, और चलें सर्वप्रथम सुने रानी क्रिएशंस का विज्ञापन और फिर उसके बाद रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। तो चलें विज्ञापन के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Aur Rani Creations ke is program mein aapka hardik swagat hai. Namaskar, sat sri akal, salam, kimcho, ram ram aapko. Aur main janta hu ki सभी तरफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है, लेकिन रानी क्रिएशंस का जो सेल चल रहा है इसमें बहुत बड़ा बचत आप कर सकेंगे। साड़ीज आर सेलिंग फ्रॉम ओनली $35 ईच, और इसके साथ साथ ज्वेलरी आर गोइंग फ्रॉम $16 अ सेट, और बाकी कपड़ों पर अप टू 50% डिस्काउंट है, और कुछ और आइटम्स है जो क्लियर किए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इनमें सभी तरह के कपड़े आपको मिल सकेंगे, बच्चों के, मर्दों के, औरतों के, शादी वगैरह कर रहे हैं उसके भी, उसके साथ साथ एक्सेसरीज भी मिलेंगे। तो अगर आप को जरूरी है और कुछ खरीद भी इन करना चाहते हैं तो दुकान खुलेगी 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और कल जब रविवार है तो 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक दुकान खुली रहेगी। तो यहाँ 33 बलक्लावा स्ट्रीट उलंगेवा में, जैसे आपने सुना, स्थित है। पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर, और एयरकॉन बिल्डिंग है, और साथ में 2 मंजिले शॉप है, तो यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो गीत यहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं।

ये मित्र हमारा दिल मेरा तुझको ही ढूंढता रहता है, बहुत प्यारा सा गीत था जो आप सलमान अली और मुस्कान जी से सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और रेडियो ब्रिजबान आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और जैसे मैंने कहा कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है रानी क्रिएशंस शॉप में, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा बहुत ही उचित दामों पर। तो आए पूरे परिवार के साथ और फिर खरीद भी यहाँ पर करें, पैसे की बचत करें। अगला जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा गीत है और ये नए गीत में लिया हूँ, रिमिक्स थोड़ा है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। यह आए हैं बराती बरात लेकर।

जय मित्रों, कविता कृष्णामूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज में इस लोकप्रिय गीत को आप सुन रहे थे और सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और दूसरा गीत है एक और मजेदार गाना, कुछ ऐसे गाने लेकर आया हूँ, मेरा दिल पर घर आया। और पता याद रहे रानी क्रिएशंस का, 33 बाला क्लावा स्ट्रीट उलंगेवा ब्रिस्बेन।

जी मित्रों, आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। आपको बता दें कि रानी क्रिएशंस में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है इस समय। यहाँ पर बहुत कपड़े हैं जो रिड्यूस दामों पर, और बहुत ऐसे आइटम्स हैं जिसको भी यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, तो आप पूरे परिवार के साथ आकर खरीद बिन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो ज्वेलरी है फ्रॉम $16 अ सेट एक लिया हो रहे हैं, और इसके साथ साथ सारीज फ्रॉम $35 ईच, और बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज हैं जो वो भी क्लिया हो रहे हैं। जब आप शॉप में आओगे तो सब देखोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लगा ये गाना जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ननदिया बदावा लेके आए।

0: या मित्रों उन्होंने दिया बदौवा लेके आए, बुलावे अपने भौजी को, आप सुन रहे थे। और इसी के साथ रानी कृष्ण का आज का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया समाप्ति पर आया। और बतला दूं कि फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है रानी कृष्ण शॉप में, और सारीज फ्रॉम $35, ज्वेलरी सेट्स फ्रॉम $16 पे सेट। और इसके साथ साथ बहुत और कपड़े हैं मर्दों के, औरतों को, शादी के, बच्चों को कपड़े, और ये सब आकर आप खरीदेंगे। और साथ में टेबन्स वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं, जूती, मेंस का, शादी का, तो एक्सेसरीज जो है बहुत सारे यहाँ पर हैं, और आप आकर खरीद बिन कर सकते हैं और इन फाइनेंशियल ईयर सेल से फ़ायदा ले सकते हैं। अगले शनिवार तक आज्ञा दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, लवली शॉपिंग एट रानी क्रिएशन।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
0: और हम आगे बढ़ते हैं संगीत सरगम प्रोग्राम को जारी करते हुए। अगला जो गीत है उदित जी अलका जी के साथ अदा कर रहे हैं, फिल्म कोयला का गीत है, 90s हिट्स, तन्हाई तन्हाई तन्हाई।

जी मित्रों, 20 मिनट हुए हैं इस समय 8:08 से लेकर जी हाँ, आप सुने रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम, फिर हम पुराने जो इस संगीत सरगम प्रोग्राम को जारी किए, और इसके बाद अब हम आपको सुना रहे हैं कुछ और नहीं मगर नए गानों के साथ, और 8:30 बजे तक आप मेरा

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: 22 मिनट हुए हैं 8:00, और निविया जी आ जाएंगे 8:30, उनका साथ दीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, तेरा फितूर अरिजीत सिंह और साथियों का गीत।
3: मुझे भी प्यार हो जाए आपसे।
4: शट अप।

0: मित्रों, इस गीत को यहाँ हम रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे साथ आए हैं पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी। पंडित जी, सादर प्रणाम आपको।
1: शर्मा जी, आपको भी प्रणाम और सुनने वालों को नमस्कार। आज तो रेडियो में बहुत कुछ हम सुने हैं, राव जी को भी सुने हैं, और चलते हम भी जो ये हमारा भारतीय संस्कृति का पुरुषोत्तम मास कहते हैं या अधिक मास कहते हैं, इनमें कहा गया है कि दान की बहुत महत्व है। अगर आप एक रुपया दान करेंगे तो भगवान आपका झोली उससे ज्यादा से भरते रहेंगे। परमा जी, यही हमारा संदेश है इस महीने का। और अगर आप कहीं भी कोई भी संस्था में जहां अच्छे काम हो रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी बन रहा है, पाठशालाएं बन रहे हैं, उनमें दान करें तो आपका घर

0: है मैडम, लेकिन
1: जी मित्रों, एक गीत यहीं पर समाप्त हुआ और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप रेडियो ब्रिजवाणी सुन रहे हैं परमानंद के साथ, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें, ये गीत सुनते हैं बिक्रमजीत से।
2: मैं घिस रहा हूँ।

जी मित्रों, इस गीत को यहीं छोड़ना पड़ रहा है। गीत हम अगले सप्ताह बजाएंगे आपके लिए और आज यहीं समाप्ति कर रहे हैं। अगले शनिवार को एक बार फिर मौका मिलेगा तो बजाएंगे। चलो, इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त हुआ। थैंक यू प्रिय श्रोतागण। इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों कैसे हो आप? बिल्कुल, कैसे हो आप? कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो? अमेजिंग फील कर रहे हो? मैं तो ये सब फील कर रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ठीक है हमारा समझ आता है, पर तुम तो अभी भी काम कर रही हो। वेल, जब अपने काम से मोहब्बत हो, अपने काम से इश्क हो, तो वो काम काम नहीं लगता है। मेरे लिए तो ये वैसी वाली सिचुएशन है। सो मैं तो मजे करने आई हूँ और आपको मजे करवाने आई हूँ। सो ऑफकोर्स फन करेंगे, मस्ती करेंगे और धमाल करेंगे, क्योंकि धमाल जैसे गाने हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम नॉर्मल नहीं है, और अगर आपको लग रहा था ये प्रोग्राम नॉर्मल है तो आप यहाँ पर अब रॉन्ग प्रूव होने वाले हो, क्योंकि ये प्रोग्राम उन चुनिंदा 10 गानों से मिलकर बना है जो कि आपको कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पे वाइब करवा सकते हैं। व्हाई एम आई सेइंग दैट? वेल, ये प्रोग्राम में हम आपको ट्रेंडिंग गाने सुनाते हैं, या कोई भी ऐसा ऐसा ऐरा गहरा गाना नहीं चलाते हम आपके लिए। बहुत ही मजेदार गाने, बहुत ही ट्रेंडिंग ऐसे गाने जिनको सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार मिल रहा हो, ऐसे गाने जो कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट्स पर एकदम जलवा बिखेर रहे हो, ऐसे गाने जो आपको थिरकने पर मजबूर कर दे, ऐसे गाने जो कि आपको किसी की तारीफ करने पर मजबूर कर दे। सो या ये गाने हैं और इन्हीं गानों के साथ हमारा ये प्रोग्राम आ गया है। सो सबसे पहले हैप्पी वीकेंड आप सबको, और आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, यानी कि टॉप 10 हॉट 10 की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला गाना यानी कि 10वें नंबर का जो गाना है वो है बहुत ही मजेदार, और मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही स्वैगी भी है, क्योंकि इसका नाम ही है वाओ। मतलब गाने का नाम ही वाओ है, तो सच में गाना कितना वाओ होगा वो तो आपको पता ही है और आप अंदाजा लगा ही सकते हो। इनकेस नहीं भी पता तो अंदाजा तो लग ही सकता है, राइट? सो आइए ये गाना हम आपको सुनाते हैं जो कि मूवी हो चुकी है, रिलीज है, जवानी इश्क तो इश्क होना है, उसी का गाना है ये। डेविड धवन की क्लासिक मसाला मूवी है और वरुण धवन है इसमें।

हैं पूजा हेगड़े एंड मृणाल ठाकुर के साथ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए थिएटर्स में और देखिए और फिर मुझे बताइए क्या आपको भी वही मिर्ची लगी या नहीं लगी. पर सबसे पहले आइए जरा गाना सुनते हैं जो कि है 10वें नंबर का.

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मूवी तो लगी हुई है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि है जवानी तो इश्क होना है, और डेविड धवन बहुत वक्त बाद डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। सो ऑफ कोर्स उनकी मसाला मूवीज अगर आपने मिस की हैं तो यू शुड गो फॉर इट। नाउ लेट्स गो, और आपको एक बड़ी चटपटी सा जोक सुनाते हैं। अब ये जोक एग्जैक्टली जोक है या नहीं वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन यहां पर बात हो रही है बिजनेस आइडियाज की। जी हाँ, अब आप लोगों को तो पता ही है आजकल का जो वक्त है वो बिजनेस आइडियाज के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम है तो लोग आप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, और बेसिकली आप बिजनेसमैन बन सकते हो। ये बहुत पहले इतना ज्यादा जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता था, ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब वाला टाइम डिफरेंट है। अगर आप में आइडिया में दम है, आपके आइडिया में दम है, तो इट इज पॉसिबल। तो यहां पर एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से कहता है कि आई हैव गॉट एन बिजनेस आइडिया। तो दूसरा फ्रेंड कहता है ओके व्हाट इज इट। तो वो वाला पहला वाला फ्रेंड कहता है वी बाय अ डॉग, टीच हिम टू कम बैक होम, देन सेल हिम, देन ही कम्स बैक एंड वी रीसेल हिम। जो हाँ, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा नीरज शर्मा ये हमें बॉलीवुड की पिक्चर का सीन क्यों लग रहा है, मतलब वैसी स्टोरी क्यों लग रही है। वेल, हो सकता है। सो वहां पे जो बिजनेस आइडिया है वो कुछ ऐसा है कि एक फ्रेंड कहता है कि आई हैव गॉट एन बिजनेस आइडिया, और वो दूसरा फ्रेंड कहता है अच्छा ठीक है व्हाट इज इट एग्जैक्टली बताओ है क्या। तो वो पहला वाला फ्रेंड कहता है कि हम एक कुत्ता खरीदेंगे और उसको हम घर आना सिखा देंगे। जी हाँ, और फिर हम उसको बेच देंगे, और फिर जब वो घर आ जाएगा क्योंकि हमने उसे घर आना सिखाया होगा तो हम उसे फिर से बेच देंगे, और फिर से जहां पे हमने उसे बेचा होगा तो वो फिर से हमारे घर आ जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही नोज हाउ टू कम बैक होम, और पैसे तो अपने पास पहले ही आ चुके हैं। मतलब आप लोग बोलोगे कि क्या है ये, क्या है। फ्रेंड भी यही सोच रहा था, वो जो दूसरा वाला फ्रेंड है, कि ये कहां से तूफानी बिजनेस आइडियाज लाता है ये बंदा। जी हाँ, यहां पर एक और गाना जो कि लिटरली तबाही मचाए हुए है। जी हाँ, ये गाना भी कुछ दिन पहले आया है, कुछ दिन पहले, एंड व्हेन आई से 25 मई को ये रिलीज हुआ है, पर तब से इसने मतलब बवाल मचा दिया है। ये गाना है बादशाह का नया, और इसमें है चरणप्रीत और बादशाह, और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत नायिका। सो गाना सुनिए, क्योंकि गाना बहुत ही मजेदार है। मतलब इट्स लाइक लॉन्ग ड्राइव पार्टी वाइब, बट या लेट नाइट सॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग।
1: और हम दो बर्बादियां

दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

मैंने कहा था ना वो लेट नाइट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग अगर आपके पास नहीं है तो ये लीजिए, हमने आपको दे दिया, और हमने दे दिया ये थोड़ा कहना गलत होगा, पर बादशाह ने आपको दे दिया. एंड आई डोंट नो बट बादशाह इज इन इट्स हिज सॉफ्ट बॉय एरा. मतलब वो हमें लग रहा है कि ही इज इन हिज सॉफ्ट बॉय एरा. मतलब बादशाह जैसे गाने बना रहे हैं ना आजकल, क्या कहें उनके बारे में, राइट right? मतलब क्या गाना बना दिया. आई मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर हमें बताइएगा. इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और मुझसे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, लाइक ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है. सो आपके साथ भी ऐसा होता है कि व्हेन यू कॉल योर मॉम बट बिफोर शी सेज एनीथिंग यू हैव टू लिसन टू सम रैंडम नॉइज इन द बैकग्राउंड, लाइक रियली. मतलब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप अपनी मम्मी को कॉल करो और इससे पहले कि वो कुछ बोले, कुछ ना कुछ पीछे कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत भिन भिन भिन भिन शोर शोर शोर शोर शोर वैसी सी आवाजें जो हैं वो आती हैं, और इट्स लाइक कोई बोल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है. या जो वो पुराने जमाने में एंटीनाज वाली सिचुएशन होती थी, जब टीवी गड़बड़ हो जाता था एंटीना को ठीक किया जाता था, कुछ ऐसा नहीं लगता. मतलब एवरी टाइम आई थॉट इट वॉज जस्ट मी एंड माई मदर, बट देन इट टर्न आउट कि ये तो सब मम्मीज के साथ प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सबके साथ. आई वुड से कि ऑलमोस्ट, क्योंकि जनरलाइज नहीं करना चाहिए. आप मुझे ये बताइए, आपकी मम्मी के साथ भी ऐसा होता है, या आपकी मम्मी के भी आजू बाजू आगे पीछे लोग बैठे होते हैं वो चुप नहीं होते हैं, और आप अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन उससे पहले आपको वो जी जी जी भी भी भी भी भी सब सुनना पड़ता है. जी हाँ, प्लीज लेट मी नो. यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ जो कि है वाला. क्या बात है, गाने का नाम ही है वाला. हाँ हाँ, स्वैगी नेम, पर क्या गाना भी उतना स्वैगी है. वेल है, तभी तो इस लिस्ट में है. सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें, बिकॉज ये गाना है कॉकटेल टू का, और कॉकटेल टू का कोई भी गाना बेकार नहीं है, दैट आई कैन टेल यू.

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is
4: 0400-234-235.
5: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट sections पर। Don't miss it.
6: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी मूवी को देखकर आप इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए हो कि उस मूवी में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस की जो जॉब थी, जो प्रोफेशन था, वही प्रोफेशन में आपके जाने का जो है वो मन कर गया हो। गेस व्हाट, बहुत वक्त पहले जब मैंने एजेंट विनोद देखी थी तो मुझे स्पाई बनना था। जी हाँ, स्पाई बनने का मन कर रहा था मेरा। मुझे ऐसा लगता था कि जो अंडरकवर स्पाइज होते हैं, जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, दे आर सो कूल, दे कैन लिटरली डू एनीथिंग, सो आई वांटेड टू बी अ स्पाई। बट देन जब मैंने उन्हें पिटते हुए देखा तो ऑफकोर्स फिर मुझे लगा कि ना ना ना ना नहीं भैया, इतनी मार खाने की हिम्मत तो नहीं है तुम्हें। लेकिन अब देखिए, अब मैंने आलिया भट्ट के अल्फा का ट्रेलर देख लिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि निविया शर्मा जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग सब सीख लेनी चाहिए, बिकॉज इफ आई कांट डू दिस in my life, what am I even doing? So, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जरूर मुझे बताइएगा। और क्यों मैं इसके बारे में बात कर रही हूं? Well, इसलिए क्योंकि अल्फा का ट्रेलर और टीजर जो है वो लॉन्च हो गया, नॉट द ट्रेलर बट टीजर, और उस टीजर में आलिया भट्ट इज किकिंग सम रियल एसेस। मतलब यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो ऑफकोर्स यहां पर बॉबी देओल बड़े ही धाकड़ कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं और वही है जो एकदम सरदार बने हुए हैं उस पूरी की पूरी ट्रेनिंग के। आलिया भट्ट इज ऑल्सो वो एलीट सोल्जर जिसकी प्रिपरेशन जो है उनके पिता ने बहुत पहले ही कर दी थी। सो या, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी। ना सिर्फ इसमें आलिया भट्ट बल्कि शर्वरी बाग भी है। एंड गेस व्हाट, बॉलीवुड जो है जब से ट्रेलर आया है, टीजर आया है, तब से रिएक्ट कर रहा है। इनफैक्ट विकी कौशल ने तो उनका नाम अल्फा भट्ट रख दिया है। जी हाँ, इट्स नॉट आलिया भट्ट नाउ, इट्स अल्फा भट्ट आप लोग बोलोगे कि इट्स नॉट अल्फा बेट, इट्स अल्फा भट. या आई मीन इट्स अल्फा बेट, दैट इज वाई उन्होंने यहाँ पर ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है. सो या अगर आपने टीजर नहीं देखा अल्फा का तो जरूर देखिए. बट या आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड. विकी कौशल ने लिखा है, लुक्स बैडास, फील्स इनसेन, बॉबी सर लव दिस वर्जन ऑफ यू, कांट वेट फॉर मोर टू अनफोल्ड, शर्वरी, बेस्ट विशेस टीम. और अल्फा भट मतलब आलिया भट्ट की तो तारीफ पहले ही कर दी ना उन्होंने, आलिया को अब अल्फा ही बोल दिया सीधा, क्योंकि उनकी मूवी का नाम अल्फा है. और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो ये बंदी है इसने तो एकदम खतरनाक काम कर डाला है. सो या अब मेरा मन कर रहा है जूडो कराटे सीखने का. प्लीज टॉक मी आउट ऑफ इट, लिटरली लिटरली. नहीं तो फिर मैं जूडो कराटे करने ना लग जाऊं और फिर उसके बाद यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंस. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए जो कि है धुरंधर द रिवेंज का, और ये है सातवें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का.

जी दोस्तों, और इसी के साथ ये तो गाना था वारी जावा, और मेरा सोना है यार, मतलब मैं तो वारी जावा, मतलब मैं मर जावा, मेरा यार इतना खूबसूरत है। पंजाबी में आपने सुना, लेकिन हिंदी वाला वर्जन ये है, मतलब हिंदी वाला मतलब ये है जो मैं बता रही हूँ। सो या धुरंधर द रेवेंज जो है वो नेटफ्लिक्स पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए नेटफ्लिक्स पे। उसका पहला पार्ट भी है, यानी कि धुरंधर वो भी है, सेकेंड पार्ट द रिवेंज भी है। सो आप दोनों ही देख सकते हो। और इसी के साथ अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, गेस व्हाट, दिसंबर में धुरंधर रिलीज हुई थी और उसमें ये गाना था नाल नचना। इसे अफसाना खान ने गाया हुआ है और इसे शाश्वत सचदेव ने बनाया है। नाउ ये गाना जो है वो बहुत छोटा है, 2 मिनट 35 सेकंड का ये गाना है, लेकिन इसका जो बवाल है वो इतना ज्यादा है कि क्या ही कहा जाए। मतलब जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, अगर किसी दिन कर्दाशियन फैमिली भी इस पर ठुमके लगाती हुई नजर आ गई ना, तो आपको अचंभित नहीं होना है, क्योंकि ये गाना सच में वैसा है। प्लस इसकी जो वाइब है ना, वो हर टाइप की है, मतलब आपको ठुमके लगवा देगी। आप इसे वेडिंग पे प्ले कर सकते हैं, आप इसे किसी पार्टी में प्ले कर सकते हैं, आप इसे क्लब में प्ले कर सकते हैं, और आप ड्राइव पे भी प्ले कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस सॉन्ग कैन बी प्लेड एवरीवेयर एंड दिस इज नाल नचना। प्लस इसी गाने में तो वो नजरें मिली थी, जी हाँ, किसकी किसकी, अरे रणवीर सिंह और वही खूबसूरत अदाकारा।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर अब चलते हैं। अपनी आधी लिस्ट को तो हम कर चुके हैं कंप्लीट, अब आगे की आधी जो है उस पर चलते हैं। अब मैं आपको एक मूवी के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, एक मूवी जिसके ट्रेलर ने सबकी जुबान बंद कर दी है, सबके परखच्चे उड़ा दिए हैं, गूज़बम्प्स जो हैं वो ला दिए हैं। जी हाँ, एक ऐसी हॉरर मूवी जो कि एग्जैक्टली हॉरर नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो जैसे जैसे बिल्टअप होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बैक रूम। जी हाँ, क्या आपने इसके बारे में सुना है? वेल, इसमें वही एक्टर है जो आपको 12 इयर्स अ स्लेव में भी दिखे थे, और ये मूवी कुछ ऐसी ही है कहानी। जी हाँ, जहां पर एक आराम से नॉर्मल सी जगह पर एक दीवार के पीछे एक डिफरेंट सी डायमेंशन मिलती है, एक और डिफरेंट जगह, एक घर, एक स्टोरेज, या आप कुछ भी कह सकते हैं। सो या, क्या आपने भी बैक रूम के बारे में सुना? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। सो बेसिकली दो मूवीज के बारे में बात हो रही थी। एक थी ऑब्सेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही रिव्यू दे दिया है, और दूसरी है बैक रूम। नाउ बैक रूम की सिचुएशन जो है वो ट्रिकी है। बैक रूम मैंने अभी नहीं देखी, सो आई कांट डू द फुल रिव्यू फॉर यू। बट अगर आप थोड़ी सी गॉथिक मूवीज और थोड़ी सी हॉरर जॉनर को पसंद करते हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। बट यू नो व्हाट द थिंग इज, कि अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया चला रही थी और उसमें एक इन्फ्लुएंसर आती है और वो कहती है कि वी शुड नॉट वॉच गॉथिक और हॉरर मूवीज, क्योंकि वो जो यू नो पैरेलल यूनिवर्स में जो एंटिटीज घूम रही होती हैं वो रियल हैं और वो हमारी एनर्जी को सक करती हैं। लाइक दे आर रियल प्रेडेटर्स। एंड आई वाज लाइक रियली, ओ माय गॉड, आई एम नॉट गोना वॉच हॉरर मूवीज। बट देन अगले ही दिन मुझे बैक रूम का ट्रेलर दिखता है एंड आई वाज लाइक ओके, आई नीड टू वॉच इट। सो अगेन, आप लोग अगर हॉरर मूवीज पसंद करते हैं, देन आई कैन गिव यू अ गुड गुड लिस्ट जो कि लिटरली गूज़बम्प्स जगाने वाली है। लेकिन अगर आप लोग नहीं पसंद करते हैं तो मैं आपको अब कुछ मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप इस हफ्ते ट्रेलर के साथ नहीं बल्कि थिएटर में पूरी तरह फिल्म देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये गाना मैं सुनाने वाली हूँ, और वो है ओ सुंदरी।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये तो था सुंदरी और मुंदरी फ्रॉम भूत बंगला। लेकिन अब आपको ले चलते हैं सीधा थिएटर्स में, क्या क्या आपको मिलने वाली है। तो एक मूवी जिसके बारे में काफी बात हो रही है क्योंकि उसमें है शर्वरी बाग, वेदांग रैना और साथ में दिलजीत दोसांझ। कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि कहानी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान हुई एक लव स्टोरी की है। जी हाँ, ये दो लोग जिनको एक दूसरे से मोहब्बत होती है बट वतन जो है वो बंट जाते हैं, देश बंट जाते हैं और उसके बाद उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। उसके बाद उनके जो आगे जो पोता होता है वो कैसे मिलने जाता है अपने आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू, बट द थिंग इज कि इट इज अ लव स्टोरी एंड इट इज अ उस टाइम की है जब पार्टीशन जो है वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। बट देन अगेन इट्स अ वेरी नाजुक सॉर्ट ऑफ टॉपिक। इसको बहुत ही अच्छे से प्ले करना पड़ता है, इसको बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ता है, अदरवाइज इसके साथ जस्टिस नहीं हो सकता है। सो या यू कैन लिटरली गो फॉर इट, यू कैन लव इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मूवी जो है वो पसंद आएगी। सो मैं वापस आऊंगा, आप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं भारत। जी हाँ, क्या है ये? जी हाँ, ये है भारत भाग्य विधाता। इसमें कंगना रनावत है और आप ये मूवी भी देख सकते हैं। और अगेन आपको इस मूवी के नाम से ही पता चल गया होगा कि इट इज अबाउट पेट्रियोटिज्म, इट इज अबाउट दैट टाइम जो कि इस ऐसी गाथाएं जो हैं जब बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, बाद में अर्ली इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो वाली जो है सिचुएशन है। इसके अलावा जो मूवी आप देख सकते हैं वो भी गवर्नर। अगेन इफ यू आर अ फैन ऑफ मनोज बाजपेयी देन यू शुड लिटरली गो फॉर इट, क्योंकि मनोज बाजपेयी इसमें आपको बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। इट्स अ स्टोरी जो कि 1990s में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे इंडिया पे उस पर बेस्ड है ये। सो यू कैन गो फॉर इट। बट ये सब छोड़ के अगर आपको कुछ हल्का फुल्का रोमकॉम देखना है और डेविड धवन के स्टाइल में देखना है तो यू कैन गो फॉर है जवानी तो इश्क होना है। इसके अलावा पेडी देख सकते हैं जो कि एक पैन इंडिया मूवी है, रामचरण तेजा और जानवी कपूर की स्पोर्ट्स मूवी है, थोड़ा सा ड्रामा भी है और थोड़ा सा रोमांस भी है। सो या ये भी देख सकते हैं आप। इसी के साथ और क्या आप देख सकते हैं? वेल आई एम गोना टेल यू दैट, बट पहले हम आपको गाना सुनाएंगे, फिर हम आपको हॉलीवुड वाले वर्जन के बारे में बताएंगे क्योंकि ये तो बॉलीवुड मूवीज हुई, हिंदी मूवीज हुई, अब हम आपको बताएंगे हॉलीवुड मूवीज में आप क्या देख सकते हो थिएटर्स में। लेकिन पहले आपको सुनाएंगे एक गाना जो कि अगेन काफी फेमस हो रहा है, बट ये पुराने गाने को रिक्रिएट किया गया है। कैटरीना कैफ को मिस कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं, कौन सा गाना है, खुद सुनिए आपको पता चल जाएगा।

जी दोस्तों, पहली मूवी थी वेलकम। जब आपने इस गाने को पहली बार सुना था, ये वाली मूवी है वेलकम टू जंगल, या वेलकम टू द जंगल। और इसमें अक्षय कुमार हैं, इसमें दिशा पाटनी, और इसमें बहुत सारे और भी लोग आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि वेलकम हमेशा से वैसी ही मूवी रही है जिसमें बहुत सारे लोग आपको एक साथ आके एंटरटेन करते आए हैं। सो, कैसा लगा आपको गाना, आप मुझे ये बताइए। और आप वीडियो जरूर देखिएगा इस गाने की, और फिर आप मुझे बताइएगा क्या आपने भी कैटरीना कैफ के उस चार्म को मिस किया। नाउ आई एम नॉट गोना से कि दिशा पाटनी इज नॉट हॉट एंड सेक्सी, शी इज लिटरली वेरी हॉट, बट द थिंग इज कि कैटरीना कैफ के साथ जो इमोशन जुड़े हैं इस गाने के साथ, वो डिफरेंट है और वो लोग मिस कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब जरा आपको बताते हैं हॉलीवुड में आप क्या क्या देख सकते हो। जी हाँ, हॉलीवुड में आप क्या क्या देख सकते हो। और हॉलीवुड में जो सबसे पहली मूवी मैं आपको बताने वाली हूं वो है हॉन्टेड एकोज इन ऑफ द पास्ट। जी हाँ, हॉन्टेड एकोज ऑफ द पास्ट, अगेन इट्स अ हॉरर मूवी। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुमको क्या प्यार हो गया है कि हॉन्टेड हॉरर जॉनर्स है, मतलब इतनी सारी हॉन्टेड मूवीज तुम हमें बता रही हो। सो या, इट इज व्हाट इट इज, एंड इट्स नॉट अ हॉलीवुड मूवी, एक्चुअली इट्स अ बॉलीवुड मूवी। सो या, यू कैन गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसके अलावा जो आप देख सकते हो वो है ही मैन द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। ये है हॉलीवुड मूवी जो कि आप देख सकते हो। और अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं, इतने सारे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, यू नो कितने सारे और अलग अलग तरह के मैन हैं, ये ही मैन जो है वो उतना मजेदार नहीं लग रहा है, वेल आप अकेले नहीं हो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। बट या, यू कैन वॉच इट एंड यू कैन लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ एक और मूवी जो है रिटर्न ऑफ द जंगल। जी हाँ, ये है एक प्यारी सी मूवी, एनिमेटेड मूवी, एडवेंचर, एनिमेशन, कॉमेडी, ड्रामा, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। बच्चों को लेकर जाइए और फिर बताइए आपको कैसी लगी। जी हाँ, एनिमेटेड मूवीज तो किड्स के साथ जाने के लिए होती है, एंड दैट्स अबाउट इट। ये कुछ मूवीज जो है वो आप देख सकते हैं, और जो भी आप देखने जाओगे प्लीज हमें बताइएगा, और इसी के साथ रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। अगला गाना आपके लिए कॉकटेल 2 का, जब तलक, बाय अरिजीत सिंह।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और इसी के साथ हम अपने दूसरे नंबर के गाने पर पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी मूवी की जिसकी पहली झलक आपको थिएटर्स में दिख रही है। जी हाँ, सो बेसिकली अगर आप कोई थिएटर में मूवी देखने गए हो तो उस मूवी के स्टार्ट होने से पहले प्रोबेबिलिटी है बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो ट्रेलर मिले। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टोफर नॉलन की द ओडिसी। जी हाँ, द ओडिसी का टीजर आपको देखने को मिला। मैंने ऑलरेडी टीजर देख लिया है एंड आई कांट वेट एनी मोर। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि 7वें महीने यानी कि जुलाई में मूवी रिलीज होने वाली है। या वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस मूवी जब से इसको जो है वो बताया गया था, जब से इसको अनाउंस किया गया था, हम तब से जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं। जब इसकी कास्ट के बारे में हमने सुना, हम तब से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। और अब फाइनली 2026 के 7वें महीने यानी कि जुलाई में ये मूवी रिलीज होने वाली है। टीजर आपको मिलेगा देखने को जब आप थिएटर में कोई मूवी देखने जाएंगे। सो या आई एम क्वाइट एक्साइटेड। अब मैं आपको स्टार कास्ट के बारे में बताऊं तो आप ऑलरेडी ऐसे बोलोगे क्या बात है। सो बेसिकली इसमें आपको मैट डेमन मिलेंगे, इसमें आपको टॉम हॉलैंड मिलेंगे, इसमें आपको जेंडेया मिलेंगे, इसमें आपको एन हाथवे मिलेगी, इसमें आपको रॉबर्ट पेटिंसन मिलेगा, इसमें आपको लुपिटा नियांग मिलेगी। मतलब कौन नहीं है इस मूवी में, और ये सभी के सभी बहुत ही मेजर कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आएंगे। सो यू नो व्हाट, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड यहां पर जो दूसरे नंबर का गाना है वो है खासियत फ्रॉम चांद मेरा दिल।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। और इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब ये है कि इंट्रोड्यूस हम करने वाले हैं आपको नंबर वन सॉन्ग, जो कि पिछले हफ्ते की लिस्ट में भी नंबर वन था, तो शायद अब आपने गेस कर लिया होगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पटिंग, द हॉट, द ट्रेंडी माशुका। जी हाँ, और ये गाना है कॉकटेल 2 का, एंड ये गाना सच में बहुत ज्यादा हॉट है। वाई? वेल, वो आप जब वीडियो देखोगे इस गाने की तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कृति सेनन इज लुकिंग डैम हॉट। और शाहिद कपूर तो हमेशा से ही हॉट है, राइट? कृति सेनन भी, व्हेन टू हॉट पीपल मीट और वो ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं, तो फिर हम सब कैसे, हमारा जो माइंड है वो ब्लो नहीं होगा। सो या, दिस इज फॉर यू नंबर वन सॉन्ग माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2, और 19 जून को होने वाली है रिलीज, जल्द ही अगले हफ्ते। सो उसके लिए पूरा तरह से वो प्रमोशंस में लगी हुई है स्टारकास्ट, और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़ों में लगी हुई है। दैट्स इज द हाईलाइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कपड़ों में लोग प्रमोशन करते हैं ना, बिकॉज आई लव प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कपड़े। सो या, दैट्स अबाउट इट। एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और वीकेंड का लुत्फ उठाइए बहुत ही अच्छे से। मिलते हैं हम आपसे मंडे को इवनिंग वाइब में। बाय, सी यू, टाटा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो, तो हर डे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जा फिर जिस किसी संस्था जा विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
3: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
2: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
4: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.